श्रोताओं नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की प्रथम तिथि। तदनुसार दिनांक 23 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं, सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे।

0: समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
1: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती,
5: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। विश्व को महान बनाने का एकमात्र मार्ग है अपने चरित्र को महान बनाना। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे लंका कांड आज भाग 320। संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं आज भाग 8 प्रसारित होगा। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7:00 पर सुनिएगा हम है राही प्यार के।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा। आलेख एवं स्वर राजेश झा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन पाएंगे दोपहर 2 बजे। सुबह 8:30 पर नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का। पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की बातचीत। प्रस्तुति शकुंतला पंडित। सुबह 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। 12 बजे हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। और 1 बजे सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली दिन में 3 बजे आप सुनते हैं। और आज सखी सहेली में आप सुनेंगे इन विषयों पर बातचीत। विलुप्त होती लोरियां, पारंपरिक गीत, शब्द हमारा, विचार आपके, आशा, साड़ियों का संसार, बाघ प्रिंट साड़ी जो कि मध्य प्रदेश की प्रचलित है, और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर बातचीत। व्यंजन लोकी के व्यंजनों के बारे में चर्चा की जाएगी। संवादक सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में संगीतकार, संगीत संयोजक अप्पा वड़ावकर से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। संपादन सहयोग काजल भदरगे का है। प्रस्तुति जुबेर खान की। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। 6 बजे हिंदी में समाचार। और समाचारों के बाद 6:05 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने जारी रहेगा। शाम 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा आज राग अनुराग। और 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका जमीन के लोग, लेखन वीएम आनंद और निर्देशन दीनानाथ का है। कार्यक्रम चित्रलोक 8:15 पर। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री तनुजा पर। आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये था आज के कार्यक्रमों का झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का अंक 320।

लंका में भीषण युद्ध छिड़ा है। वानर सेना ने रावण की प्रायः आधी सेना का संहार कर दिया है। रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय

रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय तथा रणनीतियों की समीक्षा करते हैं। आधा सैन्य बल खोकर रावण चिंतित है। मंत्रणा के समय माल्यवंत रावण को फिर सीख देता है कि वेद पुराणों ने जिन प्रभु का गुण गाया है उनसे विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सका। माल्यवंत उसे स्मरण दिलाता है कि जब से वो सीता को हर लाया है तब से ही भांति भांति के अपशकुन हो रहे हैं, किंतु रावण को अपने वृद्ध नाना की ये सीख नहीं सुहाती। अपमानित कर वो माल्यवंत को सभा से निकाल देता है। रावण पुत्र मेघनाद ने पिता को अपनी दृढ़ता से उत्साहित किया। कल प्रातः देखना मैं क्या करता हूँ, अभी से क्या कहूँ। इस प्रकार पिता पुत्र में मंत्रणा होते रात बीत गई। सवेरा हुआ, वानर सेना ने एक बार फिर दुर्गम गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंड तथा अन्य अस्त्र बरसाने लगे। घोर गर्जन तर्जन और वज्र जैसे अस्त्रों से प्रलय मच गई। वानर सेना प्रहार से घायल होती है किंतु मैदान नहीं छोड़ती। मेघनाद ने जब वानर और रीछ सेना द्वारा दुर्ग के घेर लिए जाने का समाचार सुना तो युद्ध घोष करता, डंका बजाता किले से उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ।

0: सरिता में प्रसारित की जा रही है। प्रस्तुत करता है जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। अब राग यमन कल्याण में अपनी ही बनाई बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बंदिश परमात्म परक है, जिसमें गायकी के अहम अंगों का प्रयोग हुआ है, बल, पेंच, छूट, जरब, गमक की तानों के साथ अवरोही की गमक की तानों का इसमें आप अंदाज देखिए। तो सुनिए राग यमन में बंदिश।

राग यमन कल्याण की बंदिश के बाद मैं राग मालकौंस की विलंबित ख्याल की बंदिश जो उस्ताद अमीर खान साहब ने जुत ख्याल करके गाई है, यह बंदिश बहुत मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही मधुर और श्रवणीय है। इसमें भी उन सभी अंगों का प्रयोग हुआ है जैसे गमक तान, अवरोही की तान, मेरुखंड, मेरुखंड की सरगम और गमक के साथ कड़क तान। तो सुनिए मालकौंस की बंदिश जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

0: प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता में सुन रहे थे। हारमोनियम पर संगति पुरुषोत्तम वालावलकर की और तबले पर साथ ओमकार गुलवाड़ी का था। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं ऐसे महान गीतकार को जिनके शब्दों ने हिंदी सिनेमा के गीतों को भावनाओं की खूबसूरत जुबान दी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आइए सुनते हैं उनकी कलम से निकले कुछ यादगार गीत। पहली झलक, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है सी रामचंद्र ने।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चंपा कली से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। इस गीत को भी लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने।

0: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे।
1: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपाए थे।
0: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे, ये चांद का टुकड़ा छुपाए थे।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे है।
5: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
4: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
5: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता।

0: शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज हम याद कर रहे हैं महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। आज है उनकी पुण्यतिथि और आपको कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं उन्हीं के लिखे गीत नया आदमी। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, विश्वनाथ एम मूर्ति का संगीत।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आज आप सुन रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत। हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं, वक्त है एक अंतराल का।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत। आजाद फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए
3: कहिए
4: सुनिए एक खुशखबरी
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
5: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और आपको सुनवा रहे हैं शतरंज फिल्म का गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।

सम्राट फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हेमंत कुमार का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आगे के कार्यक्रमों में भी हम साथ होंगे। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पूजा नारायणिया को नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। आज कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में हमने आपको सुनवाए गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे कुछ यादगार गीत, और अब हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम में भी आप सुनेंगे उन्हीं की कलम से निकले कुछ खूबसूरत नगमे।

0: फिल्म छाया से अभी ये गीत सुन रहे थे आप लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, बोल राजेंद्र कृष्ण के सलिल चौधरी का संगीत था।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: इस मिनट सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि और हम उन्हें याद करते हुए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म भाभी से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, चित्रगुप्त का संगीत है।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45।

संजोग फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण की रचना, मदन मोहन की बनाई धुन।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आरजी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम है दो चोर।

आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की तर्ज पर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ये अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है जीने की राह।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम है राही प्यार के अब यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाजत पूजा नारानिया को, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत, आज थी उनकी पुण्यतिथि, उन्हें नमन।

0: सुबह की 8 बजने वाली है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा

0: रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमरीका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
3: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर

0: राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
3: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
4: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
5: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
4: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
6: मैंने पास PGVCL का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया।

0: इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
1: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम है। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नव भारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी दोनों।

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीजों से उसे सजाते हैं। फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगु करती मालूम होती है। इस गुफ्तगु को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नजर हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

0: छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की यूं ही हंसती रहे बाहर, मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरों दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: मेरा सारा साथ होगा।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में होंगे हाजिर।

नए गानों के कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी विविध भारती सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए इस सुबह की भी शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक एनर्जी से भरे हुए गीत के साथ। आगे भी आपको कई सुरीले गीत सुनने को मिलेंगे, ये हमारा वादा है, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ विविध भारती पर।

वेलकम टू द जंगल, इस फिल्म का गीत अभी हमने आपको सुनवाया। हालांकि कार्यक्रम हमने आपको शुरू में बता ही दिया कि चल रहा है चित्रलोक कार्यक्रम विविध भारती पर, और इस गीत को गाया था आनंद राज आनंद ने और उनके साथियों ने। मेघा बाली और आनंद राज आनंद के ही बोल थे, विक्रम मॉन्ट्रोज और आनंद राज आनंद का संगीत था। और अगला गीत सुनवाने से पहले हम आपको बता देते हैं एक जरूरी बात। 23 सितंबर आज है हिंदी साहित्य के उस तेजस्वी रचनाकार को याद करने का दिन जिनकी कलम में कविता भी थी और क्रांति की आवाज भी। जी हां, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने अपनी रचनाओं के जरिए हमें सिर्फ शब्द नहीं दिए बल्कि साहस, आत्मसम्मान, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक चेतना की प्रेरणा भी दी। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के चार अध्याय जैसी उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को सोचने, सवाल करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आज उनकी जयंती पर क्यों न दिनकर जी की ही कोई रचना पढ़ी जाए, क्योंकि अच्छा साहित्य सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, वह हमारे विचारों को दिशा देता है, हमारे भीतर संवेदना जगाता है और जीवन को थोड़ा और सार्थक बनाना सिखाता है।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे है।
5: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
4: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
5: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
5: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: अरे सुनो, कल 3 की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
7: 3 मैं तो 3 बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3?
7: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 हम सब मिलकर सुनते हैं
8: सखी सहेली।
9: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम अभी लौट आते हैं।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म टॉक्सिक से। इस गीत को लिखा है कौशल किशोर ने, गायक कलाकार और संगीतकार विशाल मिश्रा।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक। जन नेता इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। गाया है इसे नित्य संतोषिनी ने। रितेश जी राव का लिखा गीत, अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत।

जननेता फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसके गायक कलाकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। नित्या संतोषिनी ने इस गीत को गाया था। अब अगला गीत सुनवाने से पहले श्रोताओं आपको बता देते हैं कि आज है 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी नेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। क्या आपने कभी सोचा है जब शब्दों का साथ ना हो तो भावनाएं कैसे व्यक्त की जाती है, हाथों के इशारों से? जी हाँ, सांकेतिक भाषा के जरिए। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के महत्व को समझना और बधिर लोगों के अधिकारों, संवाद और समाज में उनकी समान भागीदारी के प्रति जागरूकता को फैलाना है और बढ़ाना है। एक खूबसूरत बात यह है कि जिन्हें अपनी बात कहने के लिए सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें हमसे भी थोड़ी समझ और संवेदनशीलता ही तो चाहिए। हम उनकी भाषा सुन तो नहीं सकते, लेकिन उनके इशारों को समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं ताकि भावनाओं के ये खामोश संकेत हम तक भी पहुँच सकें। और यकीन मानिए, यही कोशिश समाज को थोड़ा और संवेदनशील और समावेशी बनाएगी।

पापोन और सुनिधि चौहान की आवाजों में अभी आपने गीत सुना फिल्म बर्फी से। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा था, प्रीतम ने संगीतबद्ध किया था। और अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं नहीं जाइएगा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दीपाली सहाय की आवाज में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म का नाम मैं वापस आऊंगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत सुनवाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज सुबह 9:30 पर आज की फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, और साथ ही आज की फनकार कार्यक्रम 9:30 पर रात में केंद्रित रहेगा अभिनेत्री तनुजा पर। धमाल 4 फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं संजू राठौर की आवाज। रश्मि विराग और संजू राठौर का लिखा गीत, तनिष्क बागची और संजू राठौर का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक।

धमाल फोर फिल्म से गीत सुन रहे थे आप। अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, राम संपत का संगीत, फिल्म का नाम एक दिन।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पति पत्नी और वो दो, गुरु रंधावा और हीर की आवाज में इस फिल्म का गीत, इंदिवर के बोल, तनिष्क बागची और राजेश रोशन का संगीत।

बंटवारा 1947 इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम और हीर की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत। फिल्म का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, बंटवारा 1947।

द राजा साहब इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा, थमन एस और श्रुति रंजनी की आवाजों में। कुमार की बोल थमन एस का संगीत था और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न हो रहा है। दीजिए इजाजत पूजा नारायणिया को, नमस्कार और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स

0: लिए और उस बायनोक्युलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से यह सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है। और अब भी मैं सपना देखता हूं कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े।
0: जी
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है।
0: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, न किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं। और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो दो तीन ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीच में बीचों बीच में हूं इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूं जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं। तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है और उस संगम के बीचों बीच में हूं इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है। हम देखते हैं बंबई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मगर बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं। तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब अडेप्टेड प्लेज हैं। और जहां तक गुजराती और मराठी प्लेज का सवाल है, वहां भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं।

0: अफसोस, लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज जो रीजनल थिएटर है वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेज से ही अडेप्टेशन हैं। अगर आप उसमें झांक के देखें तो कि ओरिजिनल कहां से आए, फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहां चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं। वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेज ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बंबई में पृथ्वी और एनसीपी है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहां आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहां 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए, और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले। गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने।

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी।

0: क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णिया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के, कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहां, आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए, शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा ये सोच के। बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जाने चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
1: बार बार नहीं आते
0: और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णिया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में और फिर उनके बच्चों के साथ भी था। जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस के साथ ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णिया के बारे में, कभी स्केचेस देखे कि पूर्णिया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है। तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें, पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पांस था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा
0: जी।
1: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
0: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक उदाहरण देता हूं आपको
1: जी।
0: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
1: अच्छा,
0: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
1: बहुत खूबसूरत बात है।
0: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गई कि आपको उसी तरह से बोलना है, आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
1: अच्छा।
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है।

0: उन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है, तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मनमाफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूं शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूं उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहां एक छोटे से रोल में ले लो, वहां खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा या आपको लगा रहे मैं कहां फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना। अच्छा। जो दूसरे कैरेक्टर थे, मजा तो बहुत आया क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूं अगर मैं ये बात कह सकता हूं। लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बनके आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूं। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पिन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूं या डायरेक्टर पाता हूं।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, इसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी। और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है। उसकी फैक्ट्री, सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब, ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूं कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैं

0: शायद पहली बार एक्शन और कट कहा तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब बंबई में हैं हम।
1: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
0: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
0: आप यहां इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरी टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ में नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहां मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
1: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
0: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
1: जी,
0: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाए थे सीरियल। और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया। और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूं और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मजा आया, और भी काफी सीरियल से, लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
1: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
0: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे, हेमंदा का गाया हुआ।
1: वाह।

0: अनंत जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है। वो आदमी शायद, उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे। वो सारे कैरेक्टर्स, वहां के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी रही,
0: ये तो
1: ऐसा मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो, दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल बनाना
0: बिल्कुल
1: बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल्स बनाना बहुत मुश्किल है।
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाएं सेट पर मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना,
1: बिल्कुल
0: या फिर
1: बिल्कुल
0: पूरी
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदारी बोझ पर सर
1: डायरेक्शन के
0: पर?
1: बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में, फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है। तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है। और जहां हमको एक गाना होता है वहां 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम।
0: जी
1: इसलिए जो है वो सही है और वैसे रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
0: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया

0: जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ।
1: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है, और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
0: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
1: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया, लेकिन उसका फायदा ये भी था कि जो भी हमने

0: कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
1: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परसेंगे परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
0: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया, लेकिन उसका फायदा यह भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है, और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है, और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।

0: आनंद जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है। आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार, जब थिएटर के बाद फिल्में आई तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे। वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा, नहीं, वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा,
1: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
0: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
1: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं, नहीं, मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है।
0: ओह अच्छा, बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, ये कितनी गलतियां आपको मिलेंगी वो सिर्फ मैं जानता हूं। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है।
0: जी
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से। और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
1: संगीत में
0: रुचि है?
1: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील है, तो देखना बहुत जरूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना। और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीजों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं। हमने जहाँ से शुरुआत की थी, सपनों से ही शुरू की थी, तो सपने
0: बिल्कुल
1: अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाकई दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा, कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
0: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूं। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे।

0: कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
1: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहां गाना शुरू करूं। फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच,
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम रंग तरंग। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं और सभी को मेरा नमस्कार। लीजिए सुनिए ये गीत।

अभी आपने सुना गणेशाय धीमहि भजन, स्वर मैथिली ठाकुर, जोनीता गांधी, सूर्य गायत्री और आजीवासन किड्स का, गीतकार अजय अतुल, डॉक्टर चंद्रगुप्त वानिनकर और संगीत है अजय अतुल का। अब सुनिए गजल, बहुत खूबसूरत सी है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे अपनी मखमली आवाज और दिलकश अंदाज में पेश किया है गजल सम्राट जगजीत सिंह ने। संगीत भी जगजीत सिंह का है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

मक्ता पेश कर रहा हूं, जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहाँ तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फ़र्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फ़र्क है।

आहिस्ता आहिस्ता आप अभी और भी गजलें सुनेंगे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब पेश है एक बेहद खूबसूरत गजल, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। अमीक हनफी की कलम से निकली ये गजल उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की दिलकश आवाज और सुरों से सजी। तो आइए सुनते हैं।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब सुनिए एक बेहद खूबसूरत गजल, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है। इस यादगार गजल को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने। इसके बोल हैं शाहिद कबीर के इसके बोल हैं शाहिद कबीर के और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

पेश है बेहद खूबसूरत गजल, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। छाया गांगुली के बेहद सुरीली आवाज में इस गजल के खूबसूरत बोल हैं अदीम हाशमी के, और इसकी धुन तैयार की है मधुरानी ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग कार्यक्रम। पेश है अगली गजल, जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है अलका याग्निक ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के।

0: भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग कार्यक्रम। पेश है अगली गजल, जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है अलका याग्निक ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और इसे संगीत से सजाया है राजू सिंह ने। तो आइए सुनते हैं जरा जरा सी बातें।
1: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती से। अब सुनिए फिल्म साथ साथ की एक बेहद खूबसूरत गजल। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है चित्रा सिंह ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

आइए अब सुनते हैं फिल्म डैडी की बेहद खूबसूरत गजल आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। इस खूबसूरत गजल को अपनी आवाज दी है तलत अजीज ने। इसके बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर।
2: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ. जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और

0: और राइजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है। फिल्म का नाम इज्जत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। विविध भारती से यादों की महफिल। गूंज रही है मुबारक बेगम की आवाज केदार शर्मा के बोल, हमारी याद आएगी।

0: उमर बेगम की अवस्थी फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से यादों की महफिल, एक बेमिसाल पियानो सॉन्ग
4: आपके हसीन रुख।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

0: इंदिवर की बोलती है ओपी नैयर की तरसी किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
0: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जीने की राह फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: जीने की राह फिल्म का ये गाना था। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके

0: परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने की बस एक झलक सुनवा पाएंगे, वक्त कम है। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत पोस्ट करते हैं, एक टेक्स्ट होता है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर आता है। फेसबुक पर जाना है और लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती का पेज नजर आएगा, यहाँ होती है हमारी इबारत। आज की इबारत डायरी का एक अंश है, एक लड़की की डायरी का एक अंश। याद है तुम कहा करते थे, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं इकरार करूं। तब सब सच लगता था। एक सहेली ने कहा था, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, हंस के उड़ा दी थी वो बात। पर फिर प्यार भी खोया मैंने, सब कुछ हार के। आज कितना उदास है सब, सब कुछ ठहरा सा, पर चलते रहे हम। गमराह में खड़े थे वो साथ हो लिए, सोचा नहीं था एक दिन पराए हो जाओगे तुम। पराए हो गए तो क्या, कभी ये भी तो थे अपने। इंसान गैरों से थोड़ी उम्मीद करता है, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पुकारा था तुम्हें कई बार, पर खाली गई पुकार, तुमने खामोशी ओढ़ ली। खामोशियों से तो दिल और दिमाग चलते हैं। हाँ आंसू बहे बहुत बहे, मगर उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। तुम नहीं हो बदलते हैं मौसम, बारिश कोहरा धूप, चलती हैं हवाएं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। कभी कभी तो ये ख्याल आता है, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। पता है इंसान की सबसे खास बात क्या है, वो हर तरह के गम को भुला देता है, बाकी रह जाती है टीस। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, अब तो यही लगता है कि जमीन और आसमां हमसे दोनों खफा हैं। किसी लड़की की डायरी के ये अंश हैं और इसमें वो गाने छुपे हैं जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत ही जज्बाती होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, और अगर आप अपने दिल की बात फेसबुक पर कमेंट में हमें लिखते हैं तो ये कार्यक्रम जज्बात के मोती से सज जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कभी डायरी में आपने अपने दिल की बात लिखी, या आपने किसी दोस्त अपनी किसी सहेली से अपना दर्द उड़ेला। आज की इस इबारत को पढ़कर क्या याद आया है आपको, बताइएगा। शुरू करते हैं इस गाने के जरिए।

आप में से कितने लोग हैं जिनको ये गाना अपने दिल की धड़कन लगता है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के बीच, अंताक्षरियों में, पार्टियों में ये गाना खूब गाया है। और हाँ, किसे याद करके गाया है ये भी बताइएगा। पारिवारिक महफिलों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना

एक श्रोता लिखते हैं कि किसे याद करके ये गाना गाया है ये हम नहीं बता सकते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि फिल्म ब्लैक मेल का ये बहुत ही रोमांटिक गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता, इन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी की हर बात कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन पहले बताई थी, जो मैंने सगाई से पहले और सगाई से शादी तक की उम्मीदें उकेरी थी, और उसने पढ़ने की जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मेरे हर हालात की वो जानकार थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लफ्जों में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। एक और श्रोता की बात है कि इस गीत में प्रणय और श्रृंगार के कितने मधुर आयाम खुलते हैं, प्रेम की गहन ऊष्मा से सजी इस गीत में शब्दावली डायरी लिखने की उस दुनिया में ले जाती है जब उम्र में बहुत कच्चे थे और डायरी में पूरे संसार की बातें शामिल हो जाती थीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना दरअसल खुद से बातें करना है और अपने अनकहे दर्द को कागज पर उतारने का सबसे सुकूनदेह जरिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत और गीत हमारे जज्बात बन जाते हैं। कितनी प्यारी बात। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने अभी अभी 77 साल का सफर पूरा किया, उन्हें हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने भी अजीब होते हैं, जो बातें जबान तक नहीं आती हैं उन्हें चुपचाप सहेज लेते हैं। कुछ स्याही में भीगी शामें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नाम, वक्त मिटता जाता है मगर पन्नों पर ठहरी यादें मिटती कहाँ हैं। कितनी जज्बाती बातें हमारे सारे श्रोता लिख रहे हैं। ये गाना जो अभी हमने बजाया ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना, क्या आप बता सकते हैं कि किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया था? और इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि वो कौन सा सूत्र है जो आज के सारे गानों को एक डोर में पिरो रहा है? और इसके अलावा अब जो

गाना आ रहा है, वो इंस्टाग्राम की इस दुनिया में रीलों का शहजादा बन गया। अचानक ही इस गाने को लेकर कितने लोगों ने रीलें बना डाली। एक गाने का जैसे पुनर्आविष्कार हो गया, जैसे कि रीडिस्कवरी हो गई इस गाने की, जैसे कि दोबारा किसी को सरे राह चलते चलते कोई अनमोल मोती मिल गया हो। इस गाने ने वही कमाल किया था। क्या आपने भी इस गाने को लेकर कोई रील बनाई थी अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ? ये भी बताइएगा कि किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा है।

भई भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां। ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था, जैसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा, इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा, क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है, वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है, ये तमाम लोगों ने बताया। और भीगा भीगा है समा, ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है, मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफ़र काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफ़र कई तरह के हो सकते हैं, ज़िंदगी का सफ़र, नौकरी का सफ़र वगैरह। आज के गाने ज़िंदगी के सफ़र में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं ज़रूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज़ के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख डायरी।

कुछ होती है यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आंखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतज़ार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें, सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए हैं। न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना है, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखती है कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने। अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी, लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है, वरना सूर्य देव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीज़ें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, ज़रा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्माया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भोली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 विविध भारती, सुरीला सफर, यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे उसने मुझे गिफ्ट दिया था। 10वीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोर पंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गई जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और न शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और हैं कहती हैं कि हम अपनी कॉपी में मोरपंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोरपंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें ये बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबो कर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहाँ और आराम कहाँ, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद।

जीलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में जलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है, लता जी की आवाज सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया परदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों की डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि कब क्लास टीचर आ गई ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। हा हा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका छाया गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी। एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव। मेरी माताजी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था, बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे जमाने में जो चीज़ों के दाम थे वो देखकर आज चीज़ों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत क्या आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूँ, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूँ। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का ज़माना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही हैं कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है, यानी जो मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी ज़िंदगी का सुकून और हमारी ज़िंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में।

हजरत महमूद की आवाज आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है और इस अनूठी आवाज से आप कितना प्यार करते हैं ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बर्लिन में इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं, यहां ठंड शुरू हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं और धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अब तो टीवी से दूर ही रहते हैं, चश्मे तो पहले से चढ़े हैं, अब मोबाइल भी बस सुरीला खेलने के बाद रख देते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता क्विज में हिस्सा लिया था और मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था और एक सुंदर सी डायरी मिली थी जो उनके पास अभी तक है। एक श्रोता हैं जिनकी बेटी जब से बाहर पढ़ाई के लिए गई है तब से उनकी नींद गायब हो गई है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी डायरी में 300 से ज़्यादा गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज़ के बारे में ये श्रोता कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज़ में सुना करता था, जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था, शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफर का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्द दिल भी। एक श्रोता हैं जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके लिए एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूं, इससे ज़्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि ज़्यादातर श्रोता जो हैं वो ज़रूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजैक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस

जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

एक श्रोता लिखते हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। गम जिंदगी के साथी तो होते ही हैं। आप सभी जब जिंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये ज़रूर बताइएगा और अपनी ज़िंदगी के अनुभवों के ज़रिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों के रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं।

मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की ज़रूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं जो हमारी ज़िंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मनपसंद कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो ज़रूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्ने को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज

खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है। कितनी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती से ये अपेक्षा है कि वो एक ऐसा तोहफा दें जिससे कार्यक्रम रात 12 बजे तक जारी रहें। विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर 11 बजे समाप्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप एक काम कर सकते हैं और वो काम है ऐप पर सुनना, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए। दुनिया के कोने कोने में विविध भारती सुनाई देती है बिल्कुल 24 घंटे बिना किसी बाधा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। किस फिल्म का है ये गाना और किस तरह के जज्बात जगाता है बताइए।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गई। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरे करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतजार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफ़र कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए। क्या बात है भाई, क्या डिमांड की है आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात कि क्या पहले के ज़माने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह हैं कि आप आज के ज़माने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। और हाँ, सुबह से आपके होंठों पर कौन सा गीत सजा हुआ है ये भी बताइए।

चंपा कली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनते रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रहे पंछी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा, उसका छूटना, ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है, उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को ये बहुत पसंद था। आज उन अंकल की भी याद आ गई, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। कितनी यादें आपने इस गाने के जरिए ताज़ा कर दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गीत छुप गया कोई रे राग झिंझोटी और खमाज के पुट के साथ तैयार किया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के ज़माने में वो डायरी इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब लिखने जैसा कुछ बचा नहीं है जीवन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना चाहिए क्योंकि इससे पुराना ज़माना हमेशा याद आता रहता है। हालांकि कभी कभी डायरी जीवन की मुसीबत बन जाती है क्योंकि इसमें आपके राज छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि मेरी माँ चंपा कली फिल्म का ये गाना गाया करती थी, आपने उनकी याद दिला दी। सुचित्रा सेन के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और देखिए कि अब अकेलेपन का, उदासी का, टूटन का ये गाना आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। जिंदगी में जब अकेलेपन और उदासी के पल आए तो खुद को कैसे संभाला आपने? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको संबल दिया? जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं?

एक श्रोता ये लिखते हैं कि जिंदगी तो संघर्ष के पल्लू से ही बांध ली थी और उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया, तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूँ तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था, जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी, ये मेरी कविता लेखन की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूँ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप 2 दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिख रही हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूँ तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा। विश्वास वो चीज है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ बेमिसाल गाने थे और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आखिरी पेशकश

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम के जरिए और विविध भारती के जरिए जिंदगी को सुरीला बनाते रहिए। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के साथ रहिए। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलते हैं, रहिए विविध भारती के संग।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीजों से उसे सजाते हैं। फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगू करती मालूम होती है। इस गुफ्तगू को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नजर हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

0: रंग हजार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बाहर, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरों दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन

0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने

0: कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को लेकर देश प्रति आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
0: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
1: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में। घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली 3 व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में 2 नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोगों

0: पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
5: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
4: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे

0: सट्टे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1 लाख रुपए का स्टॉक रखते हैं।
1: माई नेम इज रमेश।
2: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूँ। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1 लाख रुपए का स्टॉक रखता हूँ।
1: स्टॉक वर्थ 1 लाख रुपए।
0: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
5: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।
7: न झटको जुल्फ से पानी।

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और
2: सोनाली पाठक का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
2: बताइए
1: क्या
2: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले रही थी, कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
1: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो। हाँ, कि मैं क्या खा रही थी।
2: बिल्कुल, मेरा पूरी तरह आपके तरफ ध्यान था।
1: अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पे असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दिनों थोड़ा सा आयुर्वेद का सेवन करना पसंद कर रही हूँ।
2: आप इन दिनों कर रही है, मैं तो हमेशा से करती हूँ।
1: अच्छा, क्या लेती हो?
2: बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जिन्हें खाने से ना उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे धीरे करके जो रोग है, जो बीमारी है, वो जड़ से निकल जाती है।
1: अरे वाह, तभी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लगती है और जो सुंदरता है तुम्हारी मुस्कुराहट की, वो भी आयुर्वेद का ही परिणाम लगती है।
2: जी, दिल से शुक्रिया। वैसे आज आयुर्वेद दिवस है तो उस पर हम जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने, पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं और किस तरह से आप अपनाते हैं।
1: सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद दिवस के बारे में तो हमारे श्रोता लिखेंगे ही, लेकिन आपने अपने जीवन में जैसे सोनाली ने आयुर्वेद को अपना रखा है
2: जी,
1: ऐसे अपनाया है कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये बताइएगा कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद का क्या उपयोग कर रहे हैं
2: जी।
1: ठीक है,
2: साथ ही आज एक और दिन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
1: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन,
2: बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं, बचपन के जब हम न्यूज देखते थे उसमें सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हम भी सुना करते थे।
1: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी करते थे। और पता है सोनाली, जब हम इस न्यूज को कई बार देखते थे ना तो हमें कुछ कुछ इशारे समझ आ जाते थे, है ना। और बचपन होता था तो शरारती होते थे, उन संकेतों को हम अपने घर पे भी दोहरा देते। हाँ। जब हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे।
2: कितना मजेदार वो माहौल हुआ करता था,
1: माहौल हुआ करता था, वो आज भी हमें याद है।
2: जी
1: बिल्कुल। और बताइए,
2: साड़ियों का संसार, इसमें बाघ प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है, पर हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है ना,
1: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर
2: जी,
1: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन की गई या क्या
2: कौन से कलर की है, आप
1: कैसी है और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा, या आपकी पतिदेव ने क्या कहा,
2: ये तो पता नहीं, बताएंगे नहीं बताएंगे हमारी सखियां।
1: अरे बताना चाहिए, अगर आपके पतिदेव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
2: वही तो। और शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है?
2: और नहीं, व्यंजन भी है ना, आज लौकी के व्यंजन।
1: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली
2: हैं। हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
1: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही
2: हूँ।
1: क्यों? लौकी मुझे पसंद नहीं है।
2: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद?
1: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
2: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
1: अरे वाह। हाँ? मुझे लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
2: और सब्जी भी उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो तो वो भी आपको पसंद आएगी।
1: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हैं।

0: लगे कि नहीं, लौकी बहुत अच्छा।
1: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है।
0: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है
1: जी।
0: पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
1: ऐसे बच्चा बनना चाहिए ना।
0: हाँ, बच्चे करते हैं ना अक्सर। हाँ। घर में क्या मम्मी लौकी की सब्जी बना दी,
1: मम्मी क्या करती उसके पराठे बना के खिलाती। पर बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए, उनके उन लौकी के बहुत फायदे हैं।
0: बिल्कुल, तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते हैं, है ना।
1: और अब एक गाना सुनते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।

0: तो तुम्हारी आंखें भी बहुत कुछ कह रही हैं कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज है ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है और वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा के इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
1: जी
0: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
1: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
0: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति का भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
1: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं ऐसा कहा जाता है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है ना? और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
0: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
1: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
0: अच्छा,
1: यानी इस दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की
0: गई है। कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में। और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं
1: जी,
0: है ना।
1: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है। मतलब आज ये दूरियां नजदीकियां बन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी, मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
1: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है।
0: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
1: जी
0: ना।
1: तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद।

0: ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं और जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें
0: मुक्ति मिल सकता
1: है ना।
0: जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गर्म खाते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम यानी गर्म गर्म गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल, तो इसे भी विरोधी माना जाता है आयुर्वेद में। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया, पर हर बार वही आदत है। कुछ कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था। लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है, पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
0: और अब गीत सुन ले।
1: हाँ, नहीं तो हमारी श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली, कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला दिल और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
0: क्या बात है,
1: कितनी सुंदर, दिल को छू लेने में बात
0: अभिव्यक्ति दी है। और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
0: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है।
1: जी, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और जो संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहाँ शब्द आवाज नहीं बन पाते, वहाँ संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
0: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले, ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
1: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
0: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सुनते हैं।

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें हो करना पड़ता है
0: जी। हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपकी रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है, तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में
0: अपनाते हैं। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना, रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है, हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी,
0: साथ ही हल्दी का दूध
1: पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना, नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो फिर वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें
0: जी,
1: है ना, या दुबले पतले, इस तरह का जो आजकल एक मार्केट चलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खान पान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खान पान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर, तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो
0: अच्छे होंगे,
1: तो शरीर
0: अच्छी होगी,
1: रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली।
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी। तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं, जहाँ आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं।
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में, और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी।
0: बाग प्रिंट साड़ी? क्या बात है।
1: मध्य प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है, बाग प्रिंट साड़ी। और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाग प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है, जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
1: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है, और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
1: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
0: हाँ, और परंपरागत जो बाघ प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
1: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: सोचिए, थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है। कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
1: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है, काला रंग डिजाइन को उभारता है, और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
0: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाघ प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी लगती है साड़ी।
1: और इसके प्रिंट देखे तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं।
0: और
1: इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वे बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
0: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाघ प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
1: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाघ प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है। और बाघ प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं, बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको मदद करता है, अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम

0: हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं उनके अनुभवों को।
1: जी, और बाग प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
0: और इसीलिए बाग प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।
1: Thank you.

0: तो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती हो। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाग प्रिंट के सूट और साड़ियाँ लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है, तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बाग प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ और मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चले
1: और ले लेते हैं,
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाग मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं और क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है, इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाग प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाघ नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक

0: की चमक और पक्कापन आता है।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाघ प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं, या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
0: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
1: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी है कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है,

0: जी आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है। किसी काम के पूरे होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना, ये मन की भावना है और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है। आशा दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
1: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है। आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाने का हौसला देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और क्या लिखते हैं हमारे श्रोता?
1: आशा उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी ये किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में, तो हम उदास हो जाते हैं, अरे जिंदगी तो हमारी
1: हो गई,
0: जिंदगी तो यही ठहर गई। लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती है हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
1: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वो हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
0: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनवाएंगे।

0: तो हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है, छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक नहीं लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दूकस की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए, हींग चाहिए, कटा हुआ धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरे में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा लगाएं। कपड़े वाले थालीपीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थालीपीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे,
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर ले। ताजा दही 2 कप फेटा हुआ, भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा, हींग, राई। बनाने की विधि, कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन या कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और इस उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा

0: धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
1: क्या बात है। और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में लें थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील लें, छीलने के बाद चखकर जरूर देख लें कड़वी तो नहीं है, पता चलेगा
0: जरूरी
1: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में एक दो चम्मच देसी घी गरम करें, इसमें कद्दूकस की भी लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5 से 7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए, दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं, इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें, हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
0: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिख कर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
1: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दूकस से कस ले है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
0: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
1: कई बार क्या होता है, माए इडली बनाती है ना, उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
0: सांभर में
1: भी है। और जब इडली हम पकाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है, ताकि जो इडली भी खाई जाएगी और लौकी भी पेट में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
0: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिये में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चे को लौकी खिला कर ही छोड़ती है।
1: इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है ना।
0: और अब गाना
1: बिल्कुल

0: तो सोनाली, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे हुए नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगु नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता संजीव शर्मा से जी श्याम की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है और उनका अनुभव और खास करके जो रेडियो के साथ इनका संबंध है, हमारी जो पहले बातचीत हुई है उसमें, तो ये बिल्कुल साबित होता है कि ये हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं ये आप ही की तरह हैं, आप में से ही निकले हैं, और जब आपसे मुखातिब हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बात ही कहेंगे। और जहाँ तक इनके काम की बात है तो बातचीत में आगे आपको पता चलता ही रहेगा। जैसे ही आपको इनका काम पता चलेगा तो इनका चेहरा भी आपके सामने नजर आ जाएगा, और वो चेहरा इतना खूबसूरत है जो आप हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच विविध भारती, ईच एंड एवरीबडी, और आप जितने सभी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी, फिल्म, वेब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली। मिस्टर नितिश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है, तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीजों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती पर संजीव शर्मा यानी मैं ईश्वर का बंदा है, जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है, और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूजिक, कुछ गाने, तो यहाँ पर एक मौका मिला है उसको पेश करने का। और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पे बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विविध भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का।
2: विविध भारती की एक लाइन मुझे भी मैडम होता है कि सुरीली धड़कन, जब से पैदा हुए हैं सर कानों में वही आवाज
1: जी,
2: वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूजिक, सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम जयमाला, छाया गीत
1: जी,
2: और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम, तो ये सब चीजें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि मतलब गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, तो आज भी उन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम, ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग

0: हैं वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफी चेंजेस हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी चीज है जो आप कभी आसानी से भूल पाएंगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर, मैं फिर से बोलूँ, मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहाँ बैठ कर मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ये सफर जो यहाँ तक पहुँचा है
0: जी
1: आपका, जाहिर है हर तरह से कभी अड़चने भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं, जो पूरी कायनात मिल जाती है, जैसा
0: बिल्कुल
1: भी आपने
0: बिल्कुल
1: कहा, वो चीज दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत, अगर करनी
0: जी जी
1: है तो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कहाँ जन्म हुआ आपका?
0: सर, मेरा जन्म हुआ गाजियाबाद में, जो यूपी में है, दिल्ली NCR में आता है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ।
1: और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? बचपना कहाँ बीता आपका?
0: बचपन सर गाजियाबाद में बीता, बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का और वहाँ की स्कूलों कॉलेज में पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस आया गाजियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
1: किस विषय में किया आपने?
0: सर मैंने BCom किया था, एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, उसके लिए फिर मैंने MA हिस्ट्री ज्वाइन किया, फिर हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्जाम दिए, सब कुछ किया। बट समहाउ क्या होता है ना, राहें आपकी अलग अलग लिखी होती है, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, हाँ
1: नहीं,
0: मैंने
1: लेकिन
0: किया।
1: इतिहास की आपने जब बात की है
0: जी
1: तो आपके जितने सीरियल्स हैं,
0: जी
1: जो धारावाहिक हैं,
0: जी
1: वो ऐतिहासिक न भी कहें तो पौराणिक तो है
0: पौराणिक
1: ही,
0: तो है ही है।
1: पुरानी चीजों से जुड़े हुए, जो
0: हाँ
1: आपको पसंद था,
0: हाँ
1: आपने वो एग्जाम के लिए तैयारियों के लिए
0: बिल्कुल
1: किया था
0: बिल्कुल
1: जरूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था, तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर घर पहुंचने के रूप में आप तक पहुंचाए हो।
0: आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम, कि वो कहते हैं ना, समथिंग हैपन फॉर समथिंग, मतलब
1: बिल्कुल
0: कुछ होता है किसी चीज के लिए, तो वही शायद जिंदगी में लिखा था। क्या लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फर्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में डिफरेंस क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किसी जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे, तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना, उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम माइथो करते हैं और जब हम उस यूनिफॉर्म, उस ड्रेस को पहनते हैं, उस गेटअप में, उस मुकुट में, उस महल में जो बना हुआ होता है, जो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान महादेव खड़े हैं, मतलब एक अपीरेंस ऐसा होता है कि उससे हम लगता है कि यार ये चीज जो मुझे अभी फील हो रही है, ये चीज रियलिटी में कैसी होगी, शायद ऐसी ही होगी। तो एक अलग ही युग में चले जाते हैं, एक अलग ही माहौल होता है वो, एक माइथो का मतलब
1: बिल्कुल
0: एक पुराना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग ए नॉवल, पार्वती, जैसे मैंने अभी शिव शक्ति मैंने किया था, तो पार्वती डॉटर का किरदार उन्होंने किया, तो वो एक अनुभूति ही अलग होती है सर, वो माइथो करने की। वो बहुत पेनिंग भी होता है, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत, कभी चुभ रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार AC नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान के साथ वहां खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहां निभा रहे होते हैं, और जैसे ही कट होता तो आप एक ओहो ये चुभ रहा है, जैसे
1: लेकिन
0: एक्शन
1: आपके
0: होता
1: मुस्कान जो है ईश्वरीय है,
0: आ
1: बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि
0: जी
1: सामाजिक जो है, फिल्में हो या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम, तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन जो किरदार देखे नहीं
0: देखे ही
1: हैं,
0: नहीं है
1: माइथोलॉजी के जो किरदार्स हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो देखे हुए नहीं रहते, तो
0: देखो,
1: उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है? क्या भाव आता है अगर आप शिवजी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिवजी की तरह फील करना, शिवजी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियां हैं
0: जी
1: उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तब क्या डिफरेंस रहता है? आपको क्या लगता है तब?
0: इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा श्याम जी, के जब हम एक पुलिस वाले का करेक्टर करते हैं, अगर हम कोट पैंट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, जब वो यूनिफॉर्म हम लोग जो पहनते हैं तो वो जो फील आता है ना, वैसा ही फील आता है जब आप माइथो में एक करेक्टर
1: कॉस्ट्यूम्स
0: का, हाँ
1: पहनते हैं।
0: कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा सा मतलब मेरा गुड लक ये रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफ़ी विषयों की मेरी जानकारी भी है, अपने धर्म के बारे में भी, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते हो तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, आपने फोटोग्राफ देखे होते हैं, आपको पता
1: जी
0: हाँ यार ऐसे ही होगा। लेकिन जब आप उस गेटअप को, उस करेक्टर को धारण करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि वो एक ऑटोमेटिकली आपकी जो शैली है, जो आपका जो एक मन है ना, मैं उसको एक

0: शब्द क्या दूं कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज, यू नो, हर चीज बदल जाती है, आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आपको बस उस गेटअप निभाने की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं यार मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूं, मतलब मैं इसको धारण किया हुआ है। एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको जो देखने वाले हैं, उनके साथ वो न्याय कर सके।
1: बिल्कुल,
0: तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है, या मतलब भगवान विष्णु के उसमें रूप में, या मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एक्टर्स उस कैरेक्टर को करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा ही न्याय करें, धूमिल ना हो छवि जो है।
1: जी, जिम्मेदारी बड़ी होती है,
0: बहुत बहुत बड़ी।
1: और सामाजिक फिल्में जो हैं, या जो दूसरी कमर्शियल फिल्में आती हैं या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपका मैनरिज्म भी काम करता है।
0: एग्जैक्टली,
1: आपका अपना अंदाज भी काम करता
0: अंदाज
1: है,
0: काम आप,
1: और उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें आपके पास में
0: नहीं
1: वो छूट नहीं होती।
0: वो बिल्कुल नहीं होती सर, कोई इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही। श्लोक जो है,
1: जी जी
0: अगर आपको संस्कृत में बोले तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे,
1: बिल्कुल
0: आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते।
1: नहीं कर सकते, अलग अलग अंदाज में नहीं कह
0: जी
1: सकते
0: जी
1: आप।
0: जैसे मेरा कैरेक्टर था भगवान वाल्मीकि का, रामसिया के लवकुश में कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से, मेरे ही आश्रम से।
1: अच्छा,
0: जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने एक भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है। हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया। वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने पहला जो संस्कृत श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया। और सर एक एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो श्लोक जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने कम से कम, नहीं तो सर 100-150 बार उसको पढ़ा। मेरी वाइफ ने मुझे पूरा उसका जो एक एक प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए, फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉर्ट दिया। भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था, वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है।
1: क्या बात है, चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की,
0: जी
1: लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में, आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है
0: जी
1: कि इस कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते हैं और सुनवाते हैं,
0: जी जी
1: तो बताइए कि इस मौके पर कौन सा पहला गीत होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पहला धारावाहिक कौन सा था, ये पहला जो स्टेज का या जो भी परफॉर्मेंस का जो मंच था आपका, वो
0: जी
1: कौन सा था, वो हम बाद में करेंगे।
0: जी जी
1: फिलहाल पहला गीत इस कार्यक्रम का कौन सा होगा जो अपने श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
0: सर मुझे ना पुराने गीत बहुत पसंद है, वो पुराने नहीं है, वो आज भी नए हैं बेसिकली।
1: बिल्कुल,
0: तो जो पहला सॉन्ग है जो मैंने सुना जब मुझे एक समझ हुई थोड़ी सी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के, कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।

0: संजीव शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफॉर्मेंस की, जो पहला परफॉर्मेंस आपका था वो कहाँ पर और कैसे, और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई वो किस तरह से हुई?
1: सर, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ना सब लोगों में बचपन से होती हैं। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है, गाना सके लेकिन गुनगुनाता ज़रूर है। एवरीबडी इज एन एक्टर। हम घर पे छोटी मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं और सिंगर भी हम सभी हैं और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएँ हैं जो हमेशा से, हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे, तो कुछ विधाएँ हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन, कि आपको कहाँ जाना है, विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप उसी राह पे चलते हैं
0: जी।
1: आप कई जगह इधर उधर भटकते हैं लेकिन अंत में आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको जाना होता है। ये सत्य है जीवन का। मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th क्लास में था, उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग डांस वन सब। तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, बलबीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते ना कीड़ा जो उन्होंने डाला दिमाग में वो ही।
0: अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके पीछे ये कीड़ा कहां से आ जाता है?
1: सर एक कहावत है ना कि
0: रुचि जगाई,
1: कि मतलब हाँ, मतलब रुचि जगाई या किसी ने पिंच किया या किसी ने मतलब
0: उस ओर प्रेरित
1: आपको चूज किया, तो वो एक आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा।
0: हाँ नहीं, बड़ा अच्छा है ये कीड़ा,
1: तो अच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर कांपने लगते थे। शैतान तो हम शुरू से थे।
0: अभी तो नहीं है ना?
1: अभी भी कभी कभी तो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए। तो काम ने करना, कुछ ना करना, सजा मिलती रहती थी, कभी हैंडसअप कर लो, कभी कुछ कर लो। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में, जैसे होते, तो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, तो मैडम जो है बलबी मैम, वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका। नोबडी वॉट्स इंटरेस्टेड बेसिकली, तो वो उनको पकड़ पकड़े खींचना पड़ा। तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा ए यू संजीव शर्मा कम आउट, क्या हो गया, आउट आउट। देखा बहुत सारे 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए, क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, अच्छा ये लाइन बोल के दिखाओ। हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया। हम एक नाटक कर रहे हैं बहू की विदा, उसमें ऐसे ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है और तुम्हें लड़की का भाई बनना, तुम्हारी एक ही लाइन है। ओके मैडम, मरता क्या ना करता। रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते करते करते करते पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग है जो ससुर का करेक्टर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था, वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे। मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या, ये हो नहीं सकता, तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, अब तो ये तुम ही करोगे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो सर। वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का करेक्टर किया जो दहेज का लालची होता है, पूरे बाल बाल सफेद करके, मूछ मूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर। डर भी बहुत लगा, पैर कांपते थे, लेकिन वो मैडम का चेहरा देखते बिल्कुल नहीं भाई, मैडम यहाँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी गाइडेंस थी। वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद 3-4 साल तक, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th तक कोई वो नहीं था, लेकिन मन में था कि नहीं यार, जब फिल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मैं आज भी सर जब मैं फिल्म देख रही हूँ तो मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठता हूँ, बहुत गौर से फिल्म देखता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे पंडित जी तुम तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं होता तो कैसे करता। मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा हूँ,
0: क्या बात।
1: तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया,
0: तो सब अच्छा हुआ ना,
1: सब अच्छा ही हुआ। वो नहीं होता सर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
0: हाँ ये बात सही है।
1: उन सबके प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से एक दिन मौका मिला मुंबई आने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए, एक साल पहले तैयारी कराई, मतलब मेरा वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह सब, एवरीथिंग चेंज, मेरा फोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरे हिम्मत जुटा के, मैं छुट्टियों में आता था, आई वाज डूइंग जॉब बेसिकली, छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था। पहला जो मुझे सीरियल मिला उसका नाम था दो हंसों का जोड़ा, और बेसिकली दैट वाज अ कैमियो करेक्टर। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कि कैमियो क्या होता है या मेन रोल क्या होता है या ये, तो ये तो अब पता लगा है। तो मेरे को जब प्रोडक्शन से कॉल आया, राजश्री प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले संजीव जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। मैंने कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैं कहा तो ठीक है मैं करूंगा। तो इसने समझ नहीं थी मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार आना दिखना है क्या होता है। वो 2-3 दिन का काम था शायद, वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सिक्वेंस था। एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो विलेन होता है, वो मैंने करेक्टर किया, वो हफ्ते भर चला सर, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, पैसे भी मिले। फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया, तो विक्रम भट्ट जी की फिल्म थी हॉन्टेड करके, तो बहुत छोटा करेक्टर मतलब ठीक है,

0: लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी सर, मेरे लिए करेक्टर से मायने नहीं था। मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ विविध भारती में, और मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं ये सोचता यार ये लोग कैसे काम करते हैं। तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है, तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी। आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज़ कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। जब मैं पैसे या मेरे लिए करेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो बस मैं वापस जाता, जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती। मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे। ये भी एक फेज था। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने शिफ्टेड टू मुंबई, और उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा फिर।
1: हाँ, मैं पूछूंगा जरूर आपसे, लेकिन अभी रोक दूंगा अपनी बात को
0: जी,
1: क्योंकि मैं गाना पूछूंगा आपसे।
0: गाना सर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने। वो एक फैमिली की जो एक ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं वो एक सपने बुनते हैं, उस पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो एक ही रंग हो जाता है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें, तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं एक्टर संजीव शर्मा जी से। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं, और उसी प्यार को आगे लिए चलते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: संजीव जी, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है पहला रोल, मैं इसको मान सकता हूं जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक?
1: सर, मेरे चार ऐसे सीरियल हैं जिनको मानता हूं कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो चारों सीरियल हैं मुझे सेम प्रोडक्शन ने दिए।
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार करता हूं सिद्धार्थ तिवारी सर का, अमोल जी का, राहुल तिवारी सर का, ये जिनके प्रोडक्शन ने मुझे चार बड़े सीरियल दिए सर। बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ्स 6 मंथ्स मतलब ठीक है। लेकिन वो जो सीरियल हुआ, जैसे राधा कृष्णा, बहुत फेमस सीरियल था सर, स्टार भारत का, तो उसमें मेरा करेक्टर था अक्रू जी, बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं।
0: अच्छा।
1: और विलन साइड में हम दो ही लोग थे, कंस और अक्रूर।
0: अच्छा।
1: और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो गए थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा थे। बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए,
0: क्योंकि पर वो नेगेटिव रोल नहीं लगा आपको?
1: नहीं सर, वो नेगेटिव नहीं था एक्चुअली, मुझे लगता था नाम सोचेंगे अक्रूर तो जेट क्रूर एंड अक्रूर,
0: हाँ
1: क्रूर नहीं है,
0: क्रूर नहीं है।
1: हाँ, ये मुझे लगा कि
0: अक्रूर है वो।
1: हाँ, वो अक्रूर है।
0: अच्छा अच्छा
1: अक्रूर जी महाराज जी का मंदिर भी है राजस्थान, उनका कई जगह वर्णन आता है, तो मुझे लगा ये नेगेटिव करेक्टर है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है
0: जी जी
1: जिसपे कंस बैठे हुए हैं, इससे पहले उनके पिताजी बैठते थे, तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना है और वो कृष्ण के मामा है, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है, मैं उसको निभा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं, जो आपका जो बॉस होता है, ऐसे मत करो प्लीज ऐसे, लेकिन आप उसे बंधे हुए उससे। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर आप कहते हैं ठीक है मैं अब अपनी ड्यूटी करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो करेक्टर है वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है, वो जो मथुरा का जो सिंहासन है वो उसके प्रति उनकी आस्था है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेटर ऑन जब सब चीजें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कंस उनसे बोलते हैं कि नाउ अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया, अब दिस इज योर ड्यूटी, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे। अक्रूर कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम यार, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो जब जाते हैं सर वहां पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं, कहते हैं यार इतने बड़े छोटे बच्चे और ये तो इंसानियत ही नहीं है। तो वो फिर भी प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको एक वहां पे दंगल टाइप द्वंद्व युद्ध है वहां पे, तो महाराज कंस ने आपको इन्वाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है चल, तो चलते हैं। उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो कुछ गलत कर रहा हूं मैं। तो वो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मतलब मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है, ये करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। फिर वहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप दर्शन देते हैं कि मैं ये हूं, तो वहां पर अक्रूर की भावनाएं बदल जाती हैं, उससे पहले वैसे शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो कोई ना कोई शक्ति तो है, तो वो फिर कृष्ण में हो जाते हैं। तो फिर वो उनको क्रूर वॉज द रीजन कंस को मारने की, जो भगवान कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं और वहां पर फिर द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहां पर कंस को मार दिया जाता है। तो ये एक करेक्टर जो मुझे बताया गया था, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया।
0: कैसा प्रतिसाद मिला उस कैरेक्टर का आपको?
1: बहुत सर, बहुत, मतलब मुझे इतना फेम मिला कि जो अक्रूर के जो वंशज हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया, मुझसे बात करते थे, मैं बहुत बड़ी बात थी।
0: हमारे श्रोताओं के लिए भी ये जो कथा है ये अनसुनी है। और इसके अलावा भी जो दूसरे तीन और हैं, चार थे,
1: एक रामसिया के लवकुश जो कलर्स पे था, उसे मैंने लॉर्ड वाल्मीकि का करेक्टर किया
0: जी,
1: तो दैट वाज अ पैरेलल लीड करेक्टर। सीरियल की कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं और वहीं पर ये लवकुश का जन्म होता है, तो इस कहानी वहां से स्टार्ट होती है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर, वंडरफुल करेक्टर, एवरीथिंग वॉज गुड। मतलब उसमें सर मुझे इतना, आई डोंट नो, अपने देश में तो मुझे पता नहीं लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहां पर हिंदुज्म है जहां पर, वहां लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के भेजते थे। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे वो पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के मुझे भेजते थे, तो दैट वॉज अ स्पेशल फीलिंग फॉर मी।
0: तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो डायलॉग्स संवाद जो हैं वो भी उसी तरह के होते हैं।

0: हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसे कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ आपके जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता, क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं और आप अलग अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे उसमें भी आपने किया है। तो ये जो छवि है जो आपके साथ में रहती है, भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाती?
1: देखिए सर, काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आपका जो काम है, जैसे आप शिद्दत से करते हैं, काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं चुनते
0: हम
1: हैं।
0: नहीं चुनते।
1: करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है। अगर आप बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की उठा के देखें कि पहले कोई करेक्टर कोई और करने वाला था, लेकिन कोई और कर रहा होता है।
0: बिल्कुल
1: जैसे आप गब्बर का अगर एग्जाम्पल
0: जी
1: लें,
0: जी
1: गब्बर वॉज द बिगेस्ट करेक्टर ऑफ द बॉलीवुड। उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आया, तो वो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम एज ए जंजीर है, बहुत सारी फिल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी, लेकिन फिर किसी और ने किया। तो एक्चुअली रोल आपको, करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है, और आपको जो मिलता है आप उसे करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भाई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे।
0: इसके लिए खास बात यह है कि उस प्रक्रिया में बने रहना
1: बने
0: पड़ता है,
1: रहना
0: और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, काम के प्रति, और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए।
1: कुछ ना
0: इसलिए
1: पे,
0: आपको ये अलग अलग जो किरदार हैं ये मिलते हैं,
1: क्योंकि तो काम ही आपको ढूंढता रहता है।
0: ये बात तो है। और कुछ गीत भी हैं जो कभी आपको ढूंढते हैं, कभी आप गीतों को ढूंढते हैं, तो ढूंढिए कोई अच्छा गीत।
1: इट इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं।

0: एक बार फिर स्वागत करते हैं संजीव शर्मा जी आपका। बहुत अच्छी जो है लाइन्स आपने बड़े ही सुर में गाई अभी थोड़ी देर पहले, और फिर गीत भी हमने सुनवाया। क्या यही प्यार है? प्यार तो है। अच्छा ये बताइए, जो जीवन का व्यक्तिगत प्यार जो होता है, परिवार का, आपने इस दरम्यान बहुत बार जिक्र भी किया है
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: बातचीत
1: जी
0: में कि आपको बहुत संभालते भी हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: उनका भी सहयोग रहता है, तो
1: बिल्कुल।
0: बताइए अपने प्यार जो है आपका, आपका जीवन जो है।
1: देखिए, निजी पत्नी से इश्क और अदाकारी, वंडरफुल फैमिली आई हैव। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, दे ऑल लव मी। और धर्म पत्नी तो उन्हीं की गाइडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा बेटा शौर्या द वंडरफुल गाय है। यही चाहिए होता सर जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी फैमिली हो जाए, मनचाहा जीवन साथी मिले और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप लगे हुए हों, और ईश्वर साधना, गुरु का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ चाहिए होता। यही एक अच्छी जिंदगी जीने का मूल मंत्र है।
0: क्या बात है। तो जो आपके धर्म पत्नी है उनका नाम?
1: उनका नाम उषा शर्मा है और वर्तमान में वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो स्कूल है मुंबई में, वहां पे वो कार्यरत हैं।
0: और बेटा क्या कर रहा है आपका?
1: सर, मेरे बेटे ने अभी 12th पास की है और वो अभी कॉलेजेस के सर्च कर रहा है, साइंस साइड उसने ली हुई है।
0: तो मम्मी तो उनके टीचर हैं, तो
1: जी
0: गाइडेंस तो मिल ही जाएगा घर
1: बिल्कुल
0: से
1: सर,
0: ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इधर आपकी तरफ आने का कोई इरादा है? किन्हीं विधाओं से जुड़े हैं आपके बेटे?
1: नहीं सर, उनका यह है कि मैं रिसर्च में जाना है मुझे, साइंस में।
0: आप भी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते
1: नहीं,
0: हैं?
1: मैं दबाव में डालता हूँ। मेरा यह कहना है कि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है कि जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनसिक्योर टाइप रहता है जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, तो समहाउ आपको एक बैकअप प्लान चाहिए हो। लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बैकअप आप रख के आइए। मतलब एटलीस्ट आपने एजुकेशन ऐसी की हो कि कल को बाई चांस, भगवान ना करे, वैसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको काम मिले, सबका मेहनत सफल हो, बाई चांस नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा। मैंने भी अच्छी एक एजुकेशन ली हुई है, लेकिन आपके बैकअप तो रहेगा ना कि हाँ यार ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं कोई जॉब तो कर लूंगा या मैं कोई बिजनेस तो चला लूंगा।
0: अच्छा, ये इतने सारे धारावाहिक किए हैं आपने, उसके बाद आपकी कोई सी इच्छा थी कि किस तरह का किरदार आपको निभाना है, कौन सी फिल्म आपको करनी है, किस तरह की फिल्म आपको करनी है,
1: सर
0: ऐसा?
1: आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुरू में आया था तो जो भी मुझे देखता था ना, वो ये कहता था यार यू आर वेरी नेगेटिव आईज, नेगेटिव फेस, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आईज, अलग ही लुक है आपका एक। मतलब शायद इसलिए कई बार मुझे ऐड मेरे हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये आंखें नेगेटिव नहीं, अगर ये आंखें नेगेटिव होती या मेरा फेस नेगेटिव होता तो मैंने जो इतने बड़े बड़े सीरियल किए हैं ये मुझे कैसे मिलते हैं? तो आई वॉज सरप्राइज कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ तिवारी, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ विजन ही हैज। नहीं नहीं यार, ये करेक्टर तो आप ही करोगे। और सच मानिए उनकी सोच इतनी आगे है कि जो भी मैंने करेक्टर किया, जैसे मैंने हिमवान अभी किया था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर। सर मैं इतना रोया हूं ना उस सीरियल में, इतना रोया हूं कि मैं एक बेटी का बाप,
0: हिमवान आपने?
1: शिव शक्ति में मैंने
0: जी
1: किया, जिसमें पार्वती दोबारा जन्म लेती हैं सती बनने के बाद, तो मेरी दो बेटियां गंगा और पार्वती, इतने आंसू बहाए ना मैंने उसमें, क्योंकि एक तो मेरे कोई बेटी नहीं है।

0: देख बेटा, तो इतने आंसू मैंने बहाए ना सर उसमें, मतलब वो जो फीलिंग थी एक डॉटर्स की, तो वो शायद उसने कहीं ना कहीं हेल्प की उस चीज़ को समझने में। मैं कहता सर पता नहीं आप कैसे मेरे को पॉजिटिव करेक्टर देते हो, मेरा मन करता है मैं नेगेटिव करेक्टर नहीं पाऊँ। तो पता नहीं उनका क्या विजन रहता है, बट जब जो भी वो करेक्टर देते हैं वो एक अलग ही लेवल पर जाता है।
1: लेकिन आपको भी लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर जो हैं अच्छे से निभा पाएंगे?
0: सर अब तो मैं सारे करेक्टर अच्छे से निभा सकता हूँ अब तो मुझे, क्योंकि जो आदमी सीरियल में रो सकता है सर वो कुछ भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हंसाना,
1: क्या बात।
0: है ना, गुस्सा दिलाना।

0: तो मुझे, क्योंकि जो आदमी सीरियल में रो सकता है सर, वो कुछ
1: क्या
0: भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हंसाना,
1: बात।
0: है ना। गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को रुला देना और किसी को हंसा देना,
1: हंसा
0: ये
1: देना
0: सबसे मुश्किल काम है।
1: सबसे कठिन
0: और
1: है।
0: सबसे मुश्किल काम है, आप फिर भी वो रुला सकते हैं। आप अपनी
1: आप
0: भावनाओं से किसी
1: हाँ
0: को इमोशनल कर सकते
1: कर
0: हैं,
1: सकते, किसी बात से कर
0: किसी
1: सकते
0: बात कर
1: हैं।
0: सकते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी कि
1: जी
0: सामने
1: जी
0: वाला इमोशन हो जाए, या किसी को आप हंसा सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये हर एक किसी के बस की नहीं है। बाकी नेगेटिव ये वो तो सब कर लेंगे, लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा एक मन है नेगेटिव करेक्टर करूं, फिर ये है कि जो करूं अच्छा करूं।
1: नहीं, वो
0: क्यों
1: तो आप करेंगे ही।
0: जी
1: अच्छा, ये मिर्जापुर 3 जो है,
0: जी जी
1: इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा कैरेक्टर है?
0: मिर्जापुर 3 सर, एक्चुअली ये बाय चांस मेरे को मिली। किसी और चीज़ के लिए मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था, उनकी कास्टिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला सर मिर्जापुर की हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें करेक्टर है ब्रिज करके, तो आप करेंगे। मैं कहा आई एम नॉट फिट इन दैट, मुझे लगता नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा फेस वगैरह और मिर्जापुर की जो करेक्टराइजेशन है, मुझे लगता है कि मैं उसे फिट बैठ पाऊंगा। बोले नहीं, आप एक बना के भेजिए। तो हमने कहा ठीक है चलो, हमने पढ़ा वढ़ा। अब मेरे साथ गुड लक क्या है सर, जो मेरी फैमिली है ना पूरी, बेटा वाइफ, ये लोग बड़े बहुत बड़े क्रिटिक हैं मेरे। तो ये लोग बताते हैं कि क्या अच्छा किया क्या अच्छा नहीं किया, तो ये लोग व्यूअर्स की तरह देखते हैं। तो मैंने बनाया सर भारी मन से कि नहीं ठीक है चलो कर लेते हैं। बनाया भेजा, कुछ दिन बाद उनका जवाब आया सर कि ये बहुत अच्छा है और हम आपको लॉक कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ये भी सर 2 दिन का करेक्टर है। मैं कहा चल 2 दिन कर लेते हैं, मिर्जापुर का एक नाम हो जाएगा। मैं सर सेट पे पहुंचा, सब चीज़ हो गई, मैं सब सेट पे पहुंचा। मैंने किसी से पूछा भाई डायरेक्टर साहब कौन से वाले हैं, तो दे वॉज अ चिल गाय, मतलब बाल बाल कोई हुए छोटे से, मतलब तो बड़े क्यूट से बड़े प्यारे से, मतलब हिज नेम इज मिस्टर गुरमीत सिंह। बोले सर ये है डायरेक्टर, जो मेरे को मिलवाने ले गया तो बोले सर ये पूछे थे डायरेक्टर साहब कैसे हैं, गुरमीत जी बड़े स्टाइल से, बोले आई एम द डायरेक्टर। मतलब तो उन्होंने सर मुझे इतना कंफर्ट कर दिया ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा हूँ और मुझे एक्ट करना है। उसमें जो गोलू का करेक्टर कर रही हूँ, वो सब लोग मेरे सामने बैठे थे और मेरा पहला सीन था। मैं बहुत डर लग रहा था भाई, मिर्जापुर पहले 2 सीजन हो चुके हैं, तीसरे सीजन में आप सक्सेसफुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो मैंने सर से पूछा, मैं कहा गुरमीत जी कैसे, बोले जैसे आप चाहो, जैसे आपको फील लगे, जो आपको करेक्टर में जम रहा हो आप वैसे ही करना, बाकी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा। सर किया मैंने, और उनके इस बात ने मुझे बड़ी हेल्प की। इवन अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गोलू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल कंफर्टेबल करा के। पहला सीन था सर मेरा, मेरी पहली एंट्री थी। और उसके बाद सर शॉट खत्म हुआ, मैं कहा ओके सर, गुमी सर कभी आगे कभी हो तो याद कीजिएगा। बोले आगे क्या मतलब, मैंने कहा मतलब इट वॉज फॉर 2 डेज ना। बोले नहीं, आपको किसने बताया, यही सुना था। बोले नहीं भाई, तो उन्होंने अपने जो एसोसिएट है उनकी टीम में सौरभ, उनको बोला कि आप बाहर जाइए, इनको समझाइए भाई अभी तो लखनऊ जाना है बनारस जाना है। तो मैंने कहा हाँ, वो सरप्राइज। मैं कहा अरे ये
1: कंटिन्यूटी
0: कि
1: में है।
0: हाँ, मतलब आपको किसने बोला 2 दिन गए, तो आज तो बहुत काम है आगे। तो मैं एक डिफरेंट सोच में था, कर रही है ये कैसे हो गया। तो सौरभ मुझे बता रहे हैं कि संजीव जी 4-5 दिन लखनऊ में होगा, फिर बनारस में होगा, मुंबई में तो आपका हो गया है, तो स्टोरी ये है ऐसे। वो मुझे स्टोरी सुना रहा है, मैं अपनी ही एक कल्पना में हूँ कि अच्छा अरे यार भैया तो बढ़िया होगा, अच्छा भैया तो बनारस में लखनऊ में आता, ये तो गुड करेक्टर फलाना निमकाना। तो फिर मैंने बोला उनको सौरभ, मैंने कहा प्लीज मैं ना पार्ट 2 देख लूंगा भाई, दिस इज द बेस्ट आइडिया, आप ना पार्ट 2 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्टर कहाँ से उठा क्या करा है। और मैं वैनिटी में आके, मतलब यार तो मजे आ गए। तो ये
1: काम करने में मजा आया, कहने का
0: हाँ मतलब फिर
1: मतलब।
0: लगा यार इज अ करेक्टर बेसिकली, और करेक्टर का नाम इज अ ब्रिज बेसिकली, जो गुड्डू पंडित का सपोर्टर है, इज अ बाहुबली है, और वो हमेशा मीटिंग्स में अरेंज करता है उनकी, और बहुत अच्छे डायलॉग्स मुझे दिए गए इसमें। और वैसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सब जैसे हैं वैसे ही आए तो मजा आ जाएगा। लुक बहुत अच्छा दिया गया है, इज अ गुड करेक्टर। 3 एपिसोड में मेरा काम है उसमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे वाली सीरीज में भी, शायद गुरमीत जी ने चाहा तो आगे भी काम बनेगा, ऊपर
1: बिल्कुल
0: वाले ने चाहा
1: बनेगा,
0: तो।
1: हम आपको
0: तो
1: शुभकामनाएं देते
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: और आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत।
0: देयर वाज अ सॉन्ग जो सिचुएशन पे है कि ये हौसला कैसे रुके, द फिल्म डोर, बहुत टचिंग सॉन्ग मुझे लगता है कि चाहे राहों में कितने कांटे हों, कितनी चीज आपको रोक ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिख दिया ना, आप वहां पहुंचोगे जरूर, बट आपको हौसला नहीं हारना है, आपको गिव अप नहीं करना है।
1: ये बात ये जीवन में जो है मायने रखती
0: ये
1: है।
0: मेरे अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। तो जैसे मेरी फैमिली कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि सोच ऐसे बनाओ कि यस आई एम
1: फोकस
0: डूइंग,
1: करना कि ये कर रहा
0: आई एम
1: हूं।
0: डूइंग, और ये मैं कर रहा हूं और ये मैं करूंगा और ये ऐसा होगा, कि मन को अपलिफ्ट करती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये
1: सर,
0: हौसला कैसे रुके।

0: मिर्ज़ापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा एक्सपीरियंस था करने का, और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। आई होप कि आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा। और फिल्मों के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ छोटे बड़े
0: जी
1: किरदार
0: जी
1: किए हैं, कौन कौन सी फिल्में रही हैं वो?
0: फिल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है मुंबई का, जो पहला प्यार होता है वो होता है फिल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फिल्में ही करने आता है। हाँ मतलब शुरू से एंड तक फिल्में ही रही है ना, उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज टाइम ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल। हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फिल्म जरूर करूँ, क्योंकि फिल्में ताउम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी फिल्में करने आया था। तो फिल्म की सर पहली फिल्म थी हॉन्टेड, बहुत छोटा करेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। खैर एनी बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, विक्रम भट्टी की फिल्म थी, बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फिल्म की एक पद्मावत, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि

0: बहुत ज्यादा करेक्टर बचा नहीं उसमें, लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाली, उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी ज्वेलरीज और वेशभूषा और जो म्यूजिक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा ट्रांसजेंडर का उसमें करेक्टर था जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा। वन वीक मेरा काम चला उसमें, नाम उसमें हजूरिया करके एक करेक्टर मुझे दिया था उन्होंने। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद सच अ लीजेंड पर्संस, उनको देख के काम करते। तो उसके बाद मुझे किसी के साथ काम करने में डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े एक मास्टर के साथ काम कर चुका था, चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन मुझे फिर उसका किसी के सामने डर नहीं लगता था। नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। फिर मैंने एक फिल्म की सर, वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिली, उसका नाम था गुड न्यूज, अक्षय कुमार जी और दलजीत दोसांझ जी का, के लिए ऑडिशन दिया था। एकदम से कॉल आया कि आप फ्री हो क्या, शाम को यशराज जाना है। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ, बोले ठीक है कल से शूट है आपका, आप आइए। मैं पहुंचा सर, एक सीन है उसमें अक्षय पाजी और दलजीत जी का, एक फाइट सीन है रेस्टोरेंट में। आई प्लेड द मैनेजर, किया सर मैंने वो फर्स्ट डे अक्षय कुमार जी, मैं तो उन्हें देखते रह गया क्योंकि मैंने कभी अक्षय कुमार जी को देखा ही नहीं था। ही सेड किया, आओ भाजी अच्छा लगा उन्होंने। मैं सर मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब मैं अक्षय पाजी के सामने खड़ा हूँ। तो एनी हाउ रिहर्सल वगैरह हुई, उनको मजा के अंदाज है, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा अलग सा लगा, मैं कहा यार मेरा मतलब हंसी उड़ा दी। मैं कहा कल पता नहीं कैसे शूट होगा, मुझे पता था उनका बिंदास अंदाज है। तो मैं घर गया, मैं सुबह जब रेडी हो रहा था आने के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा यार वो कल पाजी ने ना थोड़ा ज्यादा ही मतलब मुझे लगा कि मेरा मजाक से उड़ाया। शी सेड के ठीक है, अगर इतना ही ईगो है तो फिर घर बैठ जाओ, डोंट गो फॉर शूट, अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। मैं कहा ठीक है जो होगा करेंगे। गया मैं सर, नेक्स्ट डे अक्षय सर का जो बिहेवियर था ना वो एकदम अलग ही था। हाँ भाजी क्या हाल है, और आओ शूट करते हैं, सब क्लियर है ना? मैं हाँ जी क्लियर है। तो वो जो उनका अंदाज था ना, वो मुझे लगा नहीं यार वो एक कंफर्ट देने का उनका एक तरीका है,
1: तरीका
0: जो उन्होंने किया मुझे रिहर्सल के दौरान। और मुझे वियर्ड जरूर लगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसका इम्पैक्ट आया ना सर, सब मजाक है बिंदा एकदम काम करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करो। और सर वो सीन मैंने किया, बड़ा अच्छा सीन था वो। मैं जब सिनेमा में देखने गया उसमें, तो लोग उस पे हंसे उस सीन पे, तो मुझे लगा नहीं यार रियली थैंक्स टू अक्षय कुमार सर के, अब उनके बिना ये सीन नहीं हो पाता। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक फिल्म की थैंक गॉड, तो उसमें भी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कुलप्रीत सिंह के बीच में करेक्टर है। लगा ही नहीं कि मैं मतलब कितने बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, कि मेरे लिए तो बहुत बड़े सर वो।
1: लेकिन आप भी तो टीवी के स्टार हैं।
0: बड़े कलाकारों में सर मैंने ये देखा कि वो आपको इतना कंफर्ट देते हैं। एक्चुअल सबका मोटो क्या होता है कि चीज को अच्छी बनाना, वो किसी की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए, और किसी का पता नहीं कौन कब कहां पहुंच जाए।
1: आपके पास भी अनुभव काफी है, आप भी इन बातों को अनुसरण करेंगे हम सोचते हैं सर।
0: बिल्कुल सर, मैं आज भी करता हूं, मैं हमेशा करता हूं
1: और करते रहेंगे।
0: हाँ,
1: और अच्छा काम आपको मिलेगा, आपको पता है इस बात का यकीन आपको हमेशा रहता है।
0: बिल्कुल।
1: और बेहतर रूप में अलग अलग स्क्रीन्स पर, ओटीटी का हो, टेलीविजन का हो या फिल्म का हो, हम आपको देख पाएंगे, उसमें आपके अच्छे काम की प्रशंसा कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आने वाले दिनों में जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन तमाम बातों में आपको सफलताएं मिले, ऐसी कामना भी करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बेहतरीन बातें, बेहतरीन यादें जो हैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक छोटी सी बात बोल दूं?
1: जी जरूर।
0: कि जितनी बातें आपने की हैं, मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारी बातें श्याम जी की सुन लें और उसे अप्लाई कर दें।
1: तो हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल एक बात आपकी और सुन लेते हैं, एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।
0: जी सर, दंगल सॉन्ग के, माँ के पेट से मरकट तक तेरी कहानी, दंगल दंगल, जिसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हारना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट यू हैव टू डू।

इसी के साथ आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। हम आपको तयशुदा कार्यक्रम नहीं सुनवा पाए, इस बात का हमें खेद है।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है।

उसे देखते ही मन अनायास खिल उठता है। शायद यही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का हर कोना महक उठना है। हम

सोए हुए गीत जाग गए, तन्हा दिल रोशन कर गया कोई प्यार की रोशनी से। ख्वाबों से भरी आंखों में कोई आया मिलने, जिंदगी के दर्द भरे नगमे होठ गुनगुनाया करते थे। पर एक रोज आईना देख होठ मुस्कुरा उठे, एक दूसरे से कुछ कहने सुनने की रुत आ गई। कहते सुनते जिंदगी के दर्दीले दिन कब बीत गए पता ही न चला।

वो आया तो ऐसा लगा धूप की तपिश में जैसे कोई छतनार पेड़ सामने आ गया हो। तपती धूप में वो छाया बन गया था, जैसे सुन ली गई हो विकल पुकार। पानी पर जैसे लिखा हो कोई खामोश अफसाना। वो दिल फरेब परदेसी आया, उसने प्यार के माला में आंसू की लड़ियां भी पिरो दी।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। निगाहें मिलती हैं, दिल के आंगन में फूल ही फूल खिल जाते हैं। वक्त हवा की तरह उड़ जाता है, हम नहीं रह जाते, दिल पर किसी और का कब्जा हो जाता है। लेकिन हवा से भी तेज रफ्तार वक्त के कैनवास पर एक आंधी चलती है और दिल के आंगन में खिले फूल मुरझा जाते हैं और दिल स्तब्ध वक्त के पीछे पीछे भागता है। और फिर एक टीस निकलती है दिल से और याद आता है ये नगमा।

अंधेरे में छिटपुट रोशनी सा आया था वो, दर्द के बादल में ठंडी झींसी सा सुकून देने लगा था उससे मिलना। उसकी आमद सन्नाटे में कोयल की कूक सा मधुर लगा था। जिंदगी की राह पर चलते चलते अचानक उसके रास्ते टेढ़ी पगडंडी की ओर मुड़ गए। उसकी सुखद आमद जादुई संसार में बदल गई, वक्त की सुई उल्टी चलने लगी।

रात के अंधेरे में वो खोलती है यादों की कोठरी, यादों का खजाना। खजाने में कुछ दर्द भरे नज़्म हैं, कुछ जल्द टूटने वाले खुशियों के मोती हैं, कुछ मोहब्बत के पैगाम हैं, कुछ चिट्ठियाँ जिनमें कुछ अल्फाज हैं, उन अल्फाज में कुछ जज्बात हैं। वो इस खजाने को सहेजती है अपने मन की अलमारी में।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गडले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
7: चिट्ठी न कोई संदेह।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: तराने नए पुराने।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉन फिल्म के इस गाने के साथ, शंकर महादेवन की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरब दस पड़ बेचा।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आशा भोसले, शब्बीर कुमार और कुमार सानू की आवाजों में आप सुन रहे हैं घायल फिल्म से ये गाना, इंदिवर के बोल बप्पी लहरी का संगीत।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल की आवाज में रामलखन फिल्म से ये गाना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, सक्र, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त हो, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।

0: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरुम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगा त्यास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय उल्लक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्केट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने, इस कार्यक्रम का अगला गाना।

कयामत से कयामत तक। इस फिल्म से आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये गाना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, माफ कीजिएगा, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आनंद मिलिंद का संगीत।

पराया धन। इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में यारा दिलदारा से ये गाना। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार,

0: कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनुराधा श्रीराम की आवाज में आप सुन रहे थे लज्जा फिल्म से गाना, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत। इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न होता है।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता मिश्रंखला, ख्याल और तराने की विशेषताएं। सुनिए इस श्रृंखला का 8वां भाग। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। 7 जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। 8 हवा महल में सुनिए नाटिका जमीन के लोग। लेखन है वी एम आनंद, निर्देशन दीनानाथ का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री तनुजा पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का। 10 सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। कल सुबह 6:05 पे सुनिए वंदनवार कार्यक्रम। 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 321। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। सुनिए इस श्रृंखला का भाग 9। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे कल शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा 7 सुबह 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है सविता सिंह का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार फिरोज खान पर। आलेख और स्वर है अशोक सोनावड़ी का। प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर। कल सुबह 10 सुनिए पिटारा में आज के मेहमान संगीतकार संगीत संयोजन अप्पा भटभटकर।

सीएम यूनुस खान की बातचीत। संपादन सहयोग है काजल भदरगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। एक बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सुनिए सखी सहेली। 4 बजे हेलो फरमाइश। संवादन है यूनुस खान का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। टेलीविजन और फिल्म लेखन पुनर्वासु से बातचीत ममता सिंह की, प्रस्तुति है राघवेंद्र नेगी की। 8:00 हवा महल में सुनिए प्रहसन टपकते सितारे। लेखन है सोमनाथ नागर का, निर्देशन है कुमुद नागर का। रात्रि चित्रलोक सुनिए 8:15 पर। 9 बजे आपके लिए। 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: इसी के साथ आज का संध्या रंजन कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस संबंध में सौदाहरण जानकारी पर आधारित श्रृंखला इन दिनों संगीत सरिता में प्रसारित की जा रही है। प्रस्तुत करता है जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। अब राग यमन कल्याण में अपनी ही बनाई बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बंदिश परमात्मा परक है, जिसमें गायकी के अहम अंगों का प्रयोग हुआ है, बल, पेंच, छूट, जरब, गमक की तानों के साथ अवरोही की गमक की तानों का। इसमें आप अंदाज देखिए तो सुनिए राग यमन में बंदिश।

राग यमन कल्याण की बंदिश के बाद मैं राग मालकौंस की विलंबित ख्याल की बंदिश जो उस्ताद अमीर खान साहब ने जुत ख्याल करके गाई है, यह बंदिश बहुत मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही मधुर और श्रवणीय है। इसमें भी उन सभी अंगों का प्रयोग हुआ है जैसे गमक तान, अवरोही की तान, मेरुखंड, मेरुखंड की सरगम और गमक के साथ कड़क तान। तो सुनिए मालकौंस की बंदिश जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

0: प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता में सुन रहे थे। हारमोनियम पर संगति पुरुषोत्तम वालावलकर की और तबले पर साथ ओमकार गुलवाड़ी का था। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनीति चौहान और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे राजी फिल्म से ये देशभक्ति गीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गाना ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल, म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का।

कश्मीर की कली इस फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गाना, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। किशोर कुमार की आवाज में अगला गाना कलाकार फिल्म से, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गाना इंदिवर के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक
2: ओ, ओ, ओ।

0: के सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

नमस्कार, इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दो कलियां इस फिल्म से के गाने के साथ, आशा भोसले की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत, और राग है राग जौनपुरी।

कार्यक्रम का अगला गाना है राग कलावती पर आधारित, फिल्म है सुरसरगम, आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, बोल वसंत देव के, और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रख

0: पे सदा।
1: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना है राग काफी पर आधारित। फिल्म है गजल। मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: इसी के साथ आज का राग अनुराग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: हवा महल कार्यक्रम में आज सुनिए वीएम आनंद की लिखी नाटिका जमीन के लोग।
1: मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे।
2: क्या हो गया है तुम्हें?
1: क्या?
2: मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है और अभी तक तुमने नाश्ता भी तैयार नहीं किया है।
1: श्रीमती जी, क्यों सवेरे सवेरे नाराज हो रही हो? चूल्हा जलाने में देर हो गई थी।
2: आज कोई नई बात थोड़ी है। कोई काम तुमने वक्त पर कभी किया है? नाश्ता तुम नहीं बना सकते, खाना तुम नहीं बना सकते, बच्चा रोता रहता है, उसे तुम बोतल से दूध भी नहीं पिला सकते।
1: दूध?
2: शादी से पहले तुम्हारे माँ बाप कहते थे, लड़का घर के सारे काम काज, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई में एकदम माहिर है। लेकिन मैंने तुमसे शादी क्या की है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई।
1: सुबह सवेरे उठता हूँ, काम पर लग जाता हूँ, फिर भी तुम मुझे हर वक्त डांटती रहती हो।
2: ओहो, ना जाने इन चांद के मर्दों की रोने की आदत कब जाएगी। जरा सा डांट डपट दो, बस रोना शुरू हो जाता है।
1: शुक्र मना परमात्मा का जो तुम चांद पर पैदा हो गई। अगर जमीन पर पैदा होती तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता।
2: क्यों? जमीन पर मुझे क्या करना पड़ता जी?
1: जमीन पर घर का सारा काम काज स्त्रियां करती हैं। स्त्रियां और आदमी मजे में बैठकर गप्पे लगाते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ताश खेलते हैं।
2: वाह वाह, जमीन की बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई भला?
1: हमें? अब तो जमीन की सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ चांद के लोगों को पता चलती जा रही है। तुम्हें पता नहीं, जमीन से यहाँ चांद पर रॉकेट आने शुरू हो गए। रॉकेट?
2: रॉकेट?
1: हाँ, अभी पिछले दिनों ही तो एक रॉकेट में जमीन से दो आदमी यहाँ चांद पर आए थे।
2: अरे अरे, देखो देखो, वो देखो, वो कौन सी चीज है जो हमारे चांद पर उतर रही है?
1: अरे वही तो है रॉकेट। आज एक और रॉकेट जमीन से आ गया।
2: देखो तो वो उस रॉकेट में से आदमी बाहर निकल रहा है।
1: और देखो देखो देखो, अब एक औरत बाहर निकल रही है।
2: अरे सुनो, इस रॉकेट में तो बच्चे भी आए हैं।
1: बच्चे?
2: हाँ, अब वो देखो, वो एक
1: दो
2: तीन चार पांच, ओहो ना जाने कितने और हैं। हाय राम, एक फैमिली के इतने बच्चे।
1: अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं? एक फैमिली के इतने बच्चे भला कैसे हो सकते हैं? लगता है जमीन के किसी स्कूल के बच्चे होंगे।
2: हाँ, या इनके अड़ोस पड़ोस के बच्चे होंगे।
1: ये भी हो सकता।
2: हाँ, उन्हें घुमाने के लिए लाए होंगे। चलो चलकर उनसे बातचीत करें।
1: जरूर, आज तो दिल खोल कर उनसे बातें करेंगे, उनसे जमीन के बारे में, जमीन के लोगों के बारे में हालचाल पूछेंगे। चलो चलो
2: चलो चलो।
3: ए बच्चों की माँ, चलो कहीं घूमने चले।
4: अरे जरा ठहरो तो।
3: क्यों?
4: जरा सी बिंदी भी तो लगा लूं। और थोड़ी लिपस्टिक भी।
3: ओहो, घंटों लगा रही है।
4: देखिए कहीं कोई मिल गया तो बुरा मालूम होता है।
3: एक दर्जन बच्चे हो गए समझी, बुढ़ापा आ गया, अभी तक तुम्हारी ये बिंदी और लिपस्टिक नहीं गई।
1: मैंने कहा जी नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी।

0: जी, हम यहाँ चांद के बाशिंदे हैं।
1: नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी। जी जी, हम जमीन से आए हैं।
0: जमीन से।
1: अजी, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
0: हाँ जी।
1: चलो, अच्छा है आप लोगों के आने से यहाँ कुछ हलचल तो हो जाएगी। वो मेरा मतलब है कुछ रौनक हो जाएगी।
0: और सुनाइए, जमीन पर लोगों के क्या हाल है भाई साहब?
3: जमीन पर? हाँ। जमीन पर लोग मजे में है।
0: मजे में?
3: बिल्कुल। दूनी रात चौकनी तरक्की कर रहे हैं।
1: हाँ जी, वो तो नजर ही आ रहा है।
2: नजर आ रहा है?
0: मतलब ये है कि वहाँ लोग जरूर तरक्की कर रहे होंगे। अब देखिए ना, आप आए हैं, अपने साथ कितनी रौनक लाए हैं। मेरा मतलब है स्कूल के बच्चे वगैरह भी साथ ले आए।
2: स्कूल के बच्चे?
0: हमारा मतलब है स्कूल के नहीं तो अड़ोस पड़ोस वालों के होंगे। फिर भी देखिए ना, कितने अच्छे हैं ये सब बच्चे। मैं कहता हूँ देखिए ना, सबकी शक्लें एक सी नजर आ रही
2: है। अरे वो ये बच्चे आपको स्कूल के बच्चे या अड़ोस पड़ोस के बच्चे नजर आ रहे हैं?
3: भाई साहब,
0: हाँ जी,
3: आपको ये जानकर खुशी होगी।
0: हाँ।
3: ये सब बच्चे हमारे अपने हैं।
1: क्या ये तमाम बच्चे आपके?
0: बाप रे, तब तो जमीन के लोगों की बहुत आउटपुट है।
3: क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे है भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सुनाइए भाई साहब, जमीन की बातें सुनाइए, जमीन के लोगों की बातें सुनाइए।
1: क्या ये सच है कि जमीन पर औरतों को बहुत काम करना पड़ता है?
2: अरे काम की तो पूछो ही नहीं। जमीन पर औरतों को घर बार का सारा काम अपने आप करना पड़ता है, और कई बार तो उन बेचारियों को एक वक्त में दो दो काम करने पड़ जाते हैं।
1: एक वक्त में दो दो काम?
2: हाँ हाँ, बेचारी स्वेटर भी बुनती रहती हैं और आस पड़ोस की औरतों से लड़ाई झगड़ा भी करती रहती हैं। मेरा मतलब ये है कि कितनी जबरदस्त लड़ाई क्यों ना हो, मचाल है जब बुनने में जरा भी गलती हो जाए।
1: ओहो, बेचारी जमीन की औरतें।
0: अब तक सुन लिया तुमने?
2: अरे मैं कहती हूँ सिर्फ इतना ही नहीं, जब अपने पतियों के साथ बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं,
0: हाँ?
2: तो उसे सारा का सारा पर्स अकेले ही उठाना पड़ता है।
1: सारा का सारा पर्स?
2: हाँ हाँ, सारा पर्स।
1: और बाजार जाते समय मर्दों को क्या क्या उठाना हाँ, पड़ता है?
0: हाँ भाई साहब, ये भी बताइए।
3: हम मर्दों के वहाँ बड़े मजे हैं साहब।
0: अच्छा,
3: उनको क्या उठाना पड़ता है? सिर्फ तीन चार पैकेट सामान के,
0: ये
3: एक दो थैले सब्जी के, एक आध बच्चा कंधे पर,
0: अच्छा।
3: एक आध बच्चा बगल में, एक दो बच्चे उंगली पकड़े हुए ठाट से बाजार में जाते।
0: सुना तुमने? मैं कहता हूँ कमाल है साहब, कमाल है। जमीन पर मर्दों के ठाट का जवाब नहीं है। आहा।
3: सो तो ठीक है।
1: देखिए, हाँ ये भी बताइए, जमीन की क्या क्या चीजें मशहूर हैं?
0: हाँ भाई साहब,
2: जमीन की तो बहुत सी चीजें मशहूर हैं। वहाँ की फिल्में मशहूर हैं।
0: फिल्में?
2: हाँ, फिल्मी गाने मशहूर हैं।
0: फिल्में? फिल्मी गाने? क्या?
3: अरे साहब, हर फिल्म की कहानी गजब की होती है।
0: अच्छा।
3: सबसे पहले एक लड़के और लड़की में मोहब्बत हो जाती है।
1: मोहब्बत?
0: मोहब्बत किस चिड़िया का नाम?
2: अरे फिटे मुंह, तुम लोग फल छोकने के लिए यहाँ पैदा हुए हो क्या, जो इतना भी पता नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है?
3: अजी जनाब, मोहब्बत शादी से पहले की एक फॉर्मेलिटी होती है।
0: अच्छा।
3: जो शादी होते ही खत्म हो जाती है।
0: सुना तुमने?
1: लेकिन मोहब्बत होती कैसे है?
0: होती कैसे भाई साहब
3: मोहब्बत? अजी मोहब्बत बड़ी आसानी से हो जाती है।
0: अच्छा।
3: हीरो और हीरोइन, यानी के लड़का और लड़की, आमने सामने से आते हैं। हीरो साइकिल पर हो तो हीरोइन कार में होती है।
0: अच्छा।
3: हीरो कार में हो तो हीरोइन साइकिल पर, या हीरो घोड़े पर है तो हीरोइन जीप में, या हीरो टांगे में है तो हीरोइन रिक्शा में, या फटफटी में है, या स्कूटर में। कोई सी भी कन्वेंस क्यों ना हो, उनकी आपस में टक्कर जरूर हो जाती
0: है।
3: और टक्कर होते ही हीरोइन हीरो को इडियट और शट अप कहती है।
4: ये सुना?
2: और जो ही वो हीरो के गाल पर तड़क से थप्पड़ लगाती है तो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं मोहब्बत हो गई।
4: हो गई।
5: क्या मोहब्बत हुई है बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा भाई, बड़ा ही शानदार तरीका है जमीन पर मोहब्बत करने का।

0: सो तो है ही।
1: अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है जी?
0: उसके बाद एक विलेन न जाने कहाँ से आन टपकता है।
2: विलेन?
0: और वो हीरोइन को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है।
1: अच्छा,
0: विलन एक हाथ में हीरोइन का हाथ पकड़े रहता है। हाँ। और दूसरे हाथ से जीप चलाता है या घोड़ा दौड़ाता है।
1: लेकिन वो हीरोइन विलन से अपना हाथ तो छुड़ा सकती है ना?
3: ओ, हीरोइन अपना हाथ कैसे छुड़ा सकती है? हीरोइन का हाथ विलन के हाथ में नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर के हाथ में होता है।
4: देखा तो मैंने भाई साहब, उसके बाद क्या होता है?
0: उसके बाद विलेन हीरोइन से शादी करने की कोशिश करता है।
1: अच्छा,
0: शादी मुकम्मल होने में जब एक मिनट बाकी रह जाता
2: है, एक मिनट,
0: हाँ, तो हीरो वहाँ पहुँच जाता है।
2: अच्छा,
0: और हीरोइन को बचा लेता है।
1: और अगर हीरो वक्त पर न पहुँचे तब क्या होता
3: है? लोग कैसे न पहुँचे, आखिर हीरो को पैसे किस चीज के मिलते हैं? अरे हीरो की तो यही ड्यूटी होती है कि वो वक्त पर पहुँच कर विलन की खूब पिटाई कर दे और हीरोइन को बचा कर उससे शादी कर।
4: जमीन पर शादी कैसे होती है?
0: शादी जब दूल्हा बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुँचता है तो इस फिल्मी गाने का रिकॉर्ड बज रहा होता है।
4: किस?
0: लो आज किनारे पर आकर अरमान की कश्ती डूब गई।
3: और जब दूल्हा और दुल्हन के फेरे हो रहे होते हैं, अरे तो कौन से गाने की आवाज आती है?
4: हाँ भाई साहब,
0: वो गाना।
3: हाँ हाँ,
0: कोई दुनिया में हमारी तरह बर्बाद न हो। अरे कोई दुनिया में हमारी तरह बर्बाद न हो। दिल तो रोता हो मगर होठों पे फरियाद न हो। और दुल्हा दुल्हन को डोली में लेकर चलता है तो इस गाने की आवाज सुनाई देती है।
2: किस गाने की?
0: हम जो अपनी मौत का हर सामान ले चले।
4: और फिर शादी के बाद क्या होता है?
0: शादी के बाद क्या होता है? कमाल है। अजी भाई साहब, ये भी बताना पड़ेगा क्या? देखा नहीं हमारी पलटन को?
1: हाँ जी, वो तो देख लिया। पर हमारा मतलब है, जमीन पर शादी के बाद लड़के और लड़की में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता?
0: अजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: देखा तुमने? बिल्कुल नहीं।
0: जमीन पर हर घर में चैन की बंसी बजती
2: है। बंसी बजती है?
0: वाह वाह, क्या कहना है। वहाँ पति पत्नी आपस में कभी नहीं
1: लड़ती,
0: कभी नहीं झगड़ती।
2: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: वाह। बच्चों की माँ, हम आपस में कभी लड़े कभी झगड़े? बताओ,
3: कभी नहीं झगड़े, कभी नहीं। अरे लड़ने झगड़ने का तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कौन लड़ती है, मेरी चोटी?
0: देखो बच्चों की भाई, बता दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें कई बार समझाया, मेरे सामने जूती का नाम ना लिया तुमने।
3: हाय हाय, तो क्या हो गया जो मैंने जूती का नाम ले लिया? अरे तुम्हें जूती दिखाई
0: का? जूती जूती दिखाया तुम अपने पप्पा को? हाँ, अपने घर वालों को?
3: खबरदार, जो मेरे घर वालों का नाम लिया, कह देती हो? हाँ, अब तो मैं यहाँ एक खड़ी भी नहीं रुकूंगी, एक नौ मिनट भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ जी अपने मायके।
0: मायके?
3: जी हाँ, संभालो तुम अपनी इस पलटन को।
0: अरे सारी की सारी रेजगारी छोड़ कर चली गई। गिनते गिनते मैं तो पागल हो जाऊंगा। अरे सुनती हो, ए बच्चों की माँ, ए बच्चों की माँ, रुक जाओ। चांद के भाई साहब?
2: हाँ जमीन के भाई साहब। हाँ जमीन के भाई साहब,
0: ये मत समझना कि ये हमारी लड़ाई है।
2: अच्छा नहीं है?
0: दरअसल जमीन पर जब भी किसी औरत को अपने मायके जाना होता है वो इसी तरह का नाटक करती है।
5: तो ये थी नाटिका जमीन के लोग, लेखक वीएम आनंद, निर्देशक दीनानाथ। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम पेश होगा बस कुछ ही पर।

चित्रलोक कार्यक्रम का पहला गाना सुनते हैं जवान फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में कुमार के बोल अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं निहिरा जोशी देशपांडे और अरिजीत सिंह की आवाजों में किल दिल। इस फिल्म से शाद अली के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान।
1: आपने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भंसारे अपन नरब दशा पड़वे चल।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरिजीत सिंह की आवाज में मेट्रो इन दिनों फिल्म से ये गाना अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: A.R. रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाज में ओके जानू इस फिल्म से ये गाना, गुलजार के बोल A.R. रहमान का संगीत।

0: 8:35 होने वाले हैं और इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
2: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
4: युवाओं को संस्कार

0: आत्मनिर्भर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही वे आत्मविश्वास आत्म अनुशासन सकारात्मक सोच संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
1: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
2: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेट मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
4: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
2: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: IMD ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
3: एशियाई खेलों में रोशोबीना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
4: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
3: वहीं जयमी ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया। कहा, इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800

0: करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम आपके लिए। हलचल फिल्म से उदित नारायण और सुजाता की आवाजों में समीर के बोल, विद्यासागर का संगीत।

साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना, इस फिल्म से एक गाना सुन रहे हैं जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।

0: चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
3: और
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जन्नत फिल्म से केके की आवाज में सईद कादरी के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्ने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

23 सितंबर 1943 को जन्मी अभिनेत्री तनुजा का शुमार सिनेमा की बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में होता है। तनुजा की मां शोभना समर्थ, बहन नूतन तो अपने दौर की सुविख्यात अभिनेत्रियां रही हैं। तनुजा की बड़ी बेटी काजोल भी आज की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल है। उनकी छोटी बेटी तनिषा का रुझान भी फिल्मों में है। 1950 में बेटी नूतन के लिए शोभना समर्थ ने निर्माण किया था फिल्म हमारी बेटी का, जिसमें तनुजा ने बाल कलाकार के रूप में काम किया। लेकिन फिल्म हमारी बेटी शोभना समर्थ की दोनों बेटियों के लिए कोई करिश्मा नहीं कर पाई। 1960 में शोभना समर्थ ने एक और फिल्म बनाई छबीली, जिससे तनुजा ने बतौर अभिनेत्री औपचारिक शुरुआत की अभिनय की। फिल्म छबीली के निर्माण से थोड़ा पहले ही तनुजा विदेश से लौटी थी इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषा का कोर्स करके। तनुजा को हिंदी की तब काम चलाऊ जानकारी ही थी, लेकिन अपनी लगन से तनुजा ने हिंदी पर भी अच्छा खासा अधिकार पा लिया। एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में उनकी चर्चित फिल्म थी हमारी याद आएगी।

0: फिल्म हमारी याद आएगी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 60 के दशक की शुरुआत में अभिनेत्री तनुजा का करियर बन ही रहा था। शुरुआत की ज्यादातर भूमिकाएं सपोर्टिंग रोल की थीं। इस तरह के रोल उन्होंने जिन फिल्मों में किए वो थीं नई रोशनी, जुआरी, ज्वेल थीफ और सपनों का सौदागर। फिल्म दो दूनी चार में तनुजा ने किशोर कुमार के साथ बखूबी निभाई अपनी भूमिका।
1: बून बराबर बोना सा खन्नाकर

0: लपका, पैर के अंगूठे से उछला, टखनों से घुटनों पर उठा, पेट से आया, नाक पकड़कर फूला फैला फन फैला कर सर पिछड़ गया।
1: क्या
0: गुस्सा?

1969 में तनुजा जितेंद्र के साथ आईं जीने की राह में, और इस फिल्म ने तनुजा को स्टार डम तक पहुंचाने की राह बनाई।

पैसा या प्यार फिल्म के बाद तनुजा को कई फिल्मों के ऑफर्स मिले। 1970 में उन्होंने पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पवित्र पापी में निभाई यादगार भूमिका।

0: दीवाना।
1: 1972 में तनुजा के जीवन साथी बने शोमू मुखर्जी। उनकी फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में तनुजा ने अभिनय किया था। 5 अगस्त 1974 को उनकी जिंदगी में आई बेटी काजोल। राजेश खन्ना के साथ तनुजा ने फिल्म हम शक्ल और हाथी मेरे साथी में भी काम किया। हाथी मेरे साथी तनुजा की सुपरहिट फिल्म रही।

हिंदी के अलावा बांग्ला सिनेमा में भी तनुजा ने अपनी उल्लेखनीय पहचान बनाई। उत्तम कुमार, चिरंजीत, रॉबी घोष, सौमित्र चैटर्जी और विक्टर बैनर्जी जैसे अग्रणी अभिनेताओं के साथ तनुजा ने बांग्ला फिल्मों में भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। फिल्म अनुभव तनुजा की एक और चर्चित फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था बासु भट्टाचार्य ने। फिल्म अनुभव को तनुजा जी के फ्लैट में ही शूट किया गया था। तीन पात्रों की इस कहानी में तनुजा के अलावा सुप्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार और जाने माने रंगकर्मी दिनेश ठाकुर ने काम किया था। इस फिल्म में तनुजा ने अपनी भूमिका को बहुत असरदार ढंग से निभाया।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: दिन है।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
2: जाने
1: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं कोई नायिका नहीं, न ही कोई कविता हूँ, बस एक साधारण सी इंसान हूँ। आप यूं कह सकते हैं कि प्रेम में पड़ी एक मामूली सी लड़की। हाँ, मेरे लिए प्रेम वो नहीं जो सबको दिखे, प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है, प्रेम परीक्षा नहीं, प्रेम प्रतीक्षा है। हाँ, मेरे लिए प्रेम बिना शर्तों वाली शुभ दीक्षा है।

चलो चलते हैं दुनिया से दूर, बहुत दूर दूर, तुम्हारी किताबों से, कहानियों से, कविताओं से। चलो ना चलते हैं किसी टापू पर जहाँ जुगलबंदी होती है लहरों और झिंगुरों की, सफेद जमी को चूमता है स्याह आसमां, चूम लेंगे झट से चांद का माथा हम भी, तो है ना, चूम लेंगे झट से चांद का माथा हम भी।

हर चेहरा एक कहानी है, हर कहानी एक संघर्ष। कोई भीतर की जंग लड़ रहा है तो कोई बाहर की। एक तूफान खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अगर आप प्यार में हो तो भावनाओं का तूफान ज्वार लिए होता है। अगर आप प्यार में हो तो रातों

की नींद हराम हो जाती है। प्यार में पड़ा इंसान खाना पीना सोना उठना सब भूल जाता है, यानी प्रेम के किस्से दर्द की जागीर होते हैं, है ना।

इस अंतराल के बाद छाया गीत में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरी जुल्फें जब तुम्हारे कुर्ते के बटन में उलझती हैं और तुम उसे सुलझाने लगते हो तो प्यार आता है तुम पर। हाँ, तब जी चाहता है कि कह दूं कि जुल्फें यूं उलझाने की साजिश मैंने ही तो रची थी। छू जाते हो तुम मुझे हर रोज एक नया ख्वाब बनके। तुम्हारी बाहों में आके लगता है जैसे लिपटी हूँ पश्मीने में। हाँ, ऐसा ही तो लगता है।

जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारी स्थिर शांत भंगिमाएं देखकर लगता है, आहा हा हा, क्या अद्भुत, क्या ओजपूर्ण, शांत चित, प्रकाशवान तुम्हारा प्यार है। जब तुम कहते हो तुम्हें मुझसे प्यार है अथा प्यार, तो प्रतीत होता है कि दीपोत्सव की कोई सांझ हो जैसे, जो तुम्हारी आंखों में ठहर गई है। हाँ, तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं तब।

कभी कभी हम वो किताब बन जाते हैं जिसके पहले पन्ने पर प्रेम लिखा होता है, हाँ प्रेम, और आखिरी पन्ने पर प्रतीक्षा, सिर्फ प्रतीक्षा। बीच के पन्ने जुड़ते बिखरते रहते हैं, यहाँ वहाँ गिरते पड़ते रहते हैं। कहीं लिखी होती है खामोशी, कहीं डरावने एहसास, कहीं घायल मन और कहीं अधूरी ख्वाहिशें, यानी दर्द में लिपटी हुई एक किताब हो जाते हैं हम। हाँ, एक किताब हो जाते हैं हम तब।

सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंग तरंग
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम रंग तरंग। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं और सभी को मेरा नमस्कार। लीजिए सुनिए ये गीत।

अभी आपने सुना गणेशाय धीमहि भजन, स्वर मैथिली ठाकुर, जोनीता गांधी, सूर्य गायत्री और आजीवासन किड्स का, गीतकार अजय अतुल, डॉक्टर चंद्रगुप्त वानिनकर और संगीत है अजय अतुल का। अब सुनिए गजल, बहुत खूबसूरत सी है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे अपनी मखमली आवाज और दिलकश अंदाज में पेश किया है गजल सम्राट जगजीत सिंह ने। संगीत भी जगजीत सिंह का है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

गा मा पा गा मा रे नी रे सा ता नी सा गा मा पा नी सा।

वक्ता पेश कर रहा हूं, जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहाँ तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फ़र्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फ़र्क है।

आहिस्ता आहिस्ता आप अभी और भी गजलें सुनेंगे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब पेश है एक बेहद खूबसूरत गजल, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा, अमीक हन्फी की कलम से निकली ये गजल। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की दिलकश आवाज और सुरों से सजी, तो आइए सुनते हैं।

0: रंग तरंग,
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब सुनिए एक बेहद खूबसूरत गजल, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है। इस यादगार गजल को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने। इसके बोल हैं शाहिद कबीर के और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

पेश है बेहद खूबसूरत गजल, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। छाया गांगुली के बेहद सुरीली आवाज में इस गजल के खूबसूरत बोल हैं अदीम हाशमी के, और इसकी धुन तैयार की है मधुरानी ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग कार्यक्रम। पेश है अगली गजल, जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है अलका याग्निक ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और इसे संगीत से सजाया है राजू सिंह ने। तो आइए सुनते हैं जरा जरा सी बातें।
1: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती से। अब सुनिए फिल्म साथ साथ की एक बेहद खूबसूरत गजल, यू जिंदगी की राह में मजबूर हो गए इतने

हुए करीब कि हम दूर हो गए। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है चित्रा सिंह ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

अब सुनते हैं फिल्म डैडी की बेहद खूबसूरत गजल आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। इस खूबसूरत गजल को अपनी आवाज दी है तलत अजीज ने, इसके बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज है। फिल्म का नाम इज्जत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। विविध भारती से यादों की महफिल। गूंज रही है मुबारक बेगम की आवाज केदार शर्मा के बोल, हमारी याद आएगी।

0: मुबारक बेगम की आवाज थी, फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से यादों की महफिल, एक बेमिसाल पियानो सॉन्ग।
2: आपके हसीन रुख पे आज नए

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: खुशबू तेरे।
1: इंदिवर की बोलती है ओपी नैयर की तरसी किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो।
2: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जीने की राह फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज,

0: जीने की राह फिल्म का ये गाना था। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

अभिनेत्री तनुजा का जन्मदिन है आज और उनके गाने आज के इस कार्यक्रम में। ज्वेल थी फिल्म का ये गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी, आशा भोसले की आवाज थी।

सुन जा।

हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी की बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने की बस एक झलक सुनवा पाएंगे, वक्त कम है। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत पोस्ट करते हैं। एक टेक्स्ट होता है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर आता है। फेसबुक पर जाना है और लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती का पेज नजर आएगा, यहाँ होती है हमारी इबारत। आज की इबारत डायरी का एक अंश है, एक लड़की की डायरी का एक अंश। याद है तुम कहा करते थे, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं इकरार करूं। तब सब सच लगता था। एक सहेली ने कहा था, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, हंस के उड़ा दी थी वो बात। पर फिर प्यार भी खोया मैंने, सब कुछ हार के।

आज कितना उदास है सब, सब कुछ ठहरा सा, पर चलते रहे हम, गम राह में खड़े थे वो साथ हो लिए, सोचा नहीं था एक दिन पराए हो जाओगे तुम, पराए हो गए तो क्या, कभी ये भी तो थे अपने। इंसान गैरों से थोड़ी उम्मीद करता है, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पुकारा था तुम्हें कई बार, पर खाली गई पुकार, तुमने खामोशी ओढ़ ली। खामोशियों से तो दिल और दिमाग चलते हैं, हां आंसू बहे बहुत बहे, मगर उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। तुम नहीं हो, बदलते हैं मौसम, बारिश कोहरा धूप, चलती हैं हवाएं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। कभी कभी तो ये ख्याल आता है, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। पता है इंसान की सबसे खास बात क्या है, वो हर तरह के गम को भुला देता है, बाकी रह जाती है टीस, किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। अब तो यही लगता है कि जमीन और आसमां हमसे दोनों खफा हैं। किसी लड़की की डायरी के ये अंश हैं और इसमें वो गाने छुपे हैं जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत ही जज्बाती होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, और अगर आप अपने दिल की बात फेसबुक पर कमेंट में हमें लिखते हैं तो ये कार्यक्रम जज्बात के मोती से सज जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कभी डायरी में आपने अपने दिल की बात लिखी, या आपने किसी दोस्त अपनी किसी सहेली से अपना दर्द उड़ेला। आज की इस इबारत को पढ़कर क्या याद आया है आपको, बताइएगा। शुरू करते हैं इस गाने के जरिए।

आप में से कितने लोग हैं जिनको ये गाना अपने दिल की धड़कन लगता है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के बीच, अंताक्षरियों में, पार्टियों में ये गाना खूब गाया है, और हाँ किसे याद करके गाया है ये भी बताइएगा। पारिवारिक महफिलों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना

एक श्रोता लिखते हैं कि किसे याद करके ये गाना गाया है ये हम नहीं बता सकते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि फिल्म ब्लैक मेल का ये बहुत ही रोमांटिक गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता इन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी की हर बात कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन पहले बताई थी, जो मैंने सगाई से पहले और सगाई से शादी तक की उम्मीदें उकेरी थी और उसने पढ़ने की जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मेरे हर हालात की वो जानकार थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लफ्जों में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। एक और श्रोता की बात है कि इस गीत में प्रणय और श्रृंगार के कितने मधुर आयाम खुलते हैं, प्रेम की गहन ऊष्मा से सजी इस गीत में शब्दावली डायरी लिखने की उस दुनिया में ले जाती है जब उम्र में बहुत कच्चे थे और डायरी में पूरे संसार की बातें शामिल हो जाती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना दरअसल खुद से बातें करना है और अपने अनकहे दर्द को कागज पर उतारने का सबसे सुकून देह जरिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत और गीत हमारे जज्बात बन जाते हैं, कितनी प्यारी बात। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उन्होंने अभी अभी 77 साल का सफर पूरा किया, उन्हें हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने भी अजीब होते हैं, जो बातें जबान तक नहीं आती उन्हें चुपचाप सहेज लेते हैं। कुछ स्याही में भीगी शामें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नाम, वक्त मिटता जाता है मगर पन्नों पर ठहरी यादें मिटती कहां हैं। कितनी जज्बाती बातें हमारे सारे श्रोता लिख रहे हैं। ये गाना जो अभी हमने बजाया ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना, क्या आप बता सकते हैं कि किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया था? और इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि वो कौन सा सूत्र है जो आज के सारे गानों को एक डोर में पिरो रहा है? और इसके अलावा अब जो गाना आ रहा है वो इंस्टाग्राम की इस दुनिया में रीलों का शहजादा बन गया, अचानक ही इस गाने को लेकर कितने लोगों ने रीलें बना डाली, एक गाने का जैसे पुनर्आविष्कार हो गया, जैसे कि रीडिस्कवरी हो गई इस गाने की, जैसे कि दोबारा किसी को सरे राह चलते चलते कोई अनमोल मोती मिल गया हो, इस गाने ने वही कमाल किया था। क्या आपने भी इस गाने को लेकर कोई रील बनाई थी अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ? ये भी बताइएगा कि किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा है।

भाई भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था, जैसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा, इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा, क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है, वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है, ये तमाम लोगों ने बताया। और भीगा भीगा है समा, ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है, मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफर काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफर कई तरह के हो सकते हैं, जिंदगी का सफर, नौकरी का सफर वगैरह। आज के गाने जिंदगी के सफर में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे यहां झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं जरूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख, डायरी बहुत कुछ होती है, यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आंखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतजार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें, सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए हैं। न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना है, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखती है कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने। अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है, वरना सूर्य देव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीजें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, जरा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्माया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भोली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 पे विद भारती, सुरीला सफर, यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे उसने मुझे गिफ्ट दिया था। 10वीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोर पंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गई जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और न शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और हैं कहती हैं कि हम अपने कॉपी में मोरपंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोरपंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें यह बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता है जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में

शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबोकर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहाँ और आराम कहाँ, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद।

जीलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में जलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है, लता जी की आवाज सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों की डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि कब क्लास टीचर आ गई ध्यान ही नहीं रहा।

उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका छाया गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी। एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव। मेरी माताजी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था। बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे जमाने में जो चीजों के दाम थे वो देखकर आज चीजों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत कि आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूं, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूं। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का जमाना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही हैं कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है यानी जो मोबाइल लैपटॉप टेलीविजन वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी जिंदगी का सुकून और हमारी जिंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में।

ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बर्लिन में इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं, यहां ठंड शुरू हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं और धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अब तो टीवी से दूर ही रहते हैं, चश्मे तो पहले से चढ़े हैं, अब मोबाइल भी बस सुरीला खेलने के बाद रख देते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता क्विज में हिस्सा लिया था और मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था और एक सुंदर सी डायरी मिली थी जो उनके पास अभी तक है। एक श्रोता हैं जिनकी बेटी जब से बाहर पढ़ाई के लिए गई है तब से उनकी नींद गायब हो गई है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी डायरी में 300 से ज्यादा गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज के बारे में ये श्रोता कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज में सुना करता था, जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था, शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफर का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्द दिल भी। एक श्रोता हैं जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके लिए एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूं, इससे ज्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि ज्यादातर श्रोता जो हैं वो जरूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजैक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

एक श्रोता लिखते हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। गम जिंदगी के साथी तो होते ही हैं। आप सभी जब जिंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये जरूर बताइएगा और अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों के रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूं कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की जरूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं जो हमारी जिंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 वर्ष पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मनपसंद कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो जरूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्नों को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है। कितनी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती से ये अपेक्षा है कि वो एक ऐसा तोहफा दें जिससे कार्यक्रम रात 12 बजे तक जारी रहें। विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर 11 बजे समाप्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई, आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप एक काम कर सकते हैं और वो काम है ऐप पर सुनना, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए। दुनिया के कोने कोने में विविध भारती सुनाई देती है बिल्कुल 24 घंटे बिना किसी बाधा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। किस फिल्म का है ये गाना और किस तरह के जज्बात जगाता है बताइए।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गई। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरे करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतजार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफर कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए। क्या बात है भाई, क्या डिमांड की है आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात की क्या पहले के जमाने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह हैं कि आप आज के जमाने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। और हाँ, आज सुबह से आपके होंठों पर कौन सा गीत सजा हुआ है ये भी बताइए।

चंपा कली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनते रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रहे पंछी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा, उसका छूटना, ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है, उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को यह बहुत पसंद था। आज उन अंकल की भी याद आ गई, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। कितनी यादें आपने इस गाने के जरिए ताजा कर दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गीत छुप गया कोई रे राग झिंझोटी और खमाज के पुट के साथ तैयार किया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जमाने में वो डायरी इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब लिखने जैसा कुछ बचा नहीं है जीवन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना चाहिए क्योंकि इससे पुराना जमाना हमेशा याद आता रहता है। हालांकि कभी कभी डायरी जीवन की मुसीबत बन जाती है क्योंकि इसमें आपके राज छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि मेरी माँ चंपा कली फिल्म का ये गाना गाया करती थी, आपने उनकी याद दिला दी। सुचित्रा सेन के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और देखिए कि अब अकेलेपन का, उदासी का, टूटन का ये गाना आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। जिंदगी में जब अकेलेपन और उदासी के पल आए तो खुद को कैसे संभाला आपने? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको संबल दिया? जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं?

और श्रोताएं जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था, जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी, ये मेरी कविता लेखन की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है, लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप 2 दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिखते हैं कि जिंदगी तो संघर्ष के पल्लू से ही बांध ली थी और उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया, तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूं तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूँ तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा। विश्वास वो चीज है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ

मिसाल गाने थे, और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आखिरी पेशकश

0: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम के जरिए और विविध भारती के जरिए जिंदगी को सुरीला बनाते रहिए। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के साथ रहिए। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलते हैं, रहिए विविध भारती के संग।
1: न झटको जुल्फ से पा

0: हर तरीके
1: सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई, ई, ई, ई, ई, ई, चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम अंग्रेजी में एक एटम अंग्रेजी में एक एटम

0: हर तरीके
1: सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई, ई, ई, ई, ई, ई, चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम अंग्रेजी में एक एटम अंग्रेजी में एक एटम

अफसोस लेकिन ओ जने मन हाय जने मन, कांटे छुरी से खाना न आया, कांटे छुरी से खाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, गाना न आया बजाना न आया, अरे ये नहीं आया, अरे वो नहीं आया, गाना न आया बजाना न आया।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
6: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
7: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार
0: और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
1: बताइए
0: क्या
1: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले रही थी, कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
0: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो कि मैं क्या खा रही थी।
1: बिल्कुल, मेरा पूरी तरह आपकी तरफ ध्यान था।
0: अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पे असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दिनों थोड़ा सा आयुर्वेद का सेवन करना पसंद कर रही हूँ।
1: आप इन दिनों कर रही है, मैं तो हमेशा से करती हूँ।
0: अच्छा, क्या लेती हो?
1: बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जिन्हें खाने से ना उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे धीरे करके जो

0: रोग है जो बीमारी है वो जड़ से निकल जाती है।
1: अरे वाह, तभी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लगती है, और जो सुंदरता है तुम्हारी मुस्कुराहट की वो भी आयुर्वेद का ही परिणाम लगती है।
0: जी दिल से शुक्रिया। वैसे आज आयुर्वेद दिवस है तो उस पर हम जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है, और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने, पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं, और किस तरह से आप अपनाते हैं।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद दिवस के बारे में तो हमारे श्रोता लिखेंगे ही, लेकिन आपने अपने जीवन में जैसे सोनाली ने आयुर्वेद को अपना रखा है
0: जी,
1: ऐसे अपनाया है कि नहीं ये जानना बेहद जरूरी है। ये बताइएगा कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद का क्या उपयोग कर रहे हैं।
0: जी
1: ठीक है।
0: साथ ही आज एक और दिन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
1: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन,
0: बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं, बचपन के जब हम न्यूज देखते थे उसमें सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हम भी सुना करते थे।
1: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी करते थे। और पता है सोनाली, जब हम इस न्यूज को कई बार देखते थे ना, तो हमें कुछ कुछ इशारे समझ भी आ जाते थे, है ना। और बचपन होता था तो शरारती होते थे, उन संकेतों को हम अपने घर भी दोहरा देते। जब हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे।
0: कितना मजेदार वो माहौल हुआ करता था,
1: वो आज भी हमें याद है।
0: जी
1: बिल्कुल। और बताइए,
0: साड़ियों का संसार, इसमें बाघ प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है, और हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है ना,
1: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर,
0: जी,
1: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन की गई, या क्या
0: कौन से कलर की है, आप
1: कैसी है, और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा, या आपके पति देव ने क्या कहा,
0: ये तो पता नहीं, बताएंगी या नहीं बताएंगी हमारी सखियां।
1: अरे बताना चाहिए, अगर आपके पति देव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
0: वही तो। और शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है,
0: और नहीं व्यंजन भी है ना, आज लौकी के व्यंजन।
1: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली हैं।
0: हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
1: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही
0: हूँ।
1: मैं लौकी मुझे पसंद नहीं है।
0: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद?
1: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
0: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
1: अरे वाह। हाँ। मुझे लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
0: और सब्जी भी उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो तो वो भी आपको पसंद आएगी।
1: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हैं उन्हें लगे कि नहीं लौकी बहुत अच्छा।
0: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है,
1: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है।
0: जी।
1: पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
0: ऐसे बच्चा बनना चाहिए ना।
1: हाँ, बच्चे करते हैं ना अक्सर घर में, क्या मम्मी लौकी की सब्जी बना दी,
0: मम्मी क्या करती उसके पराठे बना के खिलाती। पर बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए, उनके
1: बिल्कुल
0: उन लौकी के बहुत फायदे हैं।
1: बिल्कुल। तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते हैं, है ना।
0: और अब एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो तुम्हारी आंखें अभी बहुत कुछ कह रही हैं कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज है ना प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
1: जी
0: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
1: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर

0: पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
1: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति का भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
0: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है ना? और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
1: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
0: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
1: अच्छा,
0: यानी इस दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा
1: की गई है। कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में। और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं
0: जी,
1: है ना।
0: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है। मतलब आज ये दूरियां नजदीकियां बन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी, मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
0: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है।
1: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी,
1: है ना?
0: तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है ना।
0: जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गर्म खाते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम, यानी गरम गरम गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल, तो इसे भी विरोधी माना जाता है आयुर्वेद में। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है, साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया, पर हर बार वही आदत है। कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था, लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है, पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
0: और अब गीत सुन ले।
1: हाँ, नहीं तो हमारे श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला दिल और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
0: क्या बात है,
1: कितनी सुंदर, दिल को छू लेने में बात
0: अभिव्यक्ति दी है
1: जी।
0: और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है
1: जी।
0: कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों, ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।

0: का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है।
1: जी, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और जो संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहां शब्द आवाज नहीं बन पाते वहां संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
0: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
1: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
0: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सुनते हैं।

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें हो करना पड़ता है
0: जी। हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपकी रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है, तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में अपनाते
0: हैं। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी,
0: साथ ही हल्दी का दूध
1: पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो फिर वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें
0: जी,
1: है ना, या दुबले पतले, इस तरह का जो आजकल एक मार्केट चलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खानपान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खानपान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर, तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो शरीर
0: होंगे,
1: तो शरीर
0: अच्छी होगी,
1: रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली,
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी। तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं, जहां आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं।
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में, और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी।
0: बाघ प्रिंट साड़ी?
1: हाँ।
0: क्या बात है,
1: मध्य प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है, बाघ प्रिंट साड़ी। और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाघ प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है, जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
1: और समय के साथ

0: स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी के ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
1: हाँ बिल्कुल, और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
0: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
1: हाँ, और परंपरागत जो बाघ प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
0: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: सोचिए, थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है। कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
0: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है, काला रंग डिजाइन को उभारता है और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
1: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाघ प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी की लगती है साड़ी।
0: और इसके प्रिंट देखें तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं।
1: और
0: इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वे बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
1: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन यह इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाघ प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
0: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाघ प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है।
1: हाँ?
0: और बाघ प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको बढ़ाता है, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं उनके अनुभवों को।
0: जी, और बाघ प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
1: इसीलिए बाघ प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

0: तो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती हो। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाघ प्रिंट के सूट और साड़ी लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है, तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बाघ प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ और मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चले
1: चले और ले लेते हैं,
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाघ मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं और क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है, इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाघ प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाघ नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाघ प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
1: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
0: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी है कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है, किसी काम के पूरे होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना, ये मन की भावना है और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है। आशा दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
1: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है। आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का हौसला देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और क्या लिखते हैं हमारे श्रोता?
1: आशा

0: उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी ये किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में, तो हम उदास हो जाते हैं, अरे जिंदगी तो हमारी बोरियत हो गई, उबाऊ हो गई, जिंदगी तो यही ठहर गई। लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती है हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
0: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है, तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
1: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनवाएंगे।

0: तो हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है। छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक नहीं, लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दू की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए, हींग चाहिए, कटा हुआ धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरे में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं। कपड़े वाले थाली पीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थाली पीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे,
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें। ताजा दही 2 कप फेटा हुआ, भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा, हींग, राई बनाने की विधि। कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन या कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है, और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में ले थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील लें। छीलने के बाद चक्कर जरूर देख लें, कड़वी तो नहीं है,
1: जरूरी है,
0: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गर्म करें। इसमें कद्दूकस की भी लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5-7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए। दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं। इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें। हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिखकर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दू कस ले है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माए इडली बनाती है ना, उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी है। और जब इडली हम पकाते हैं ना तो कद्दूकस की

0: की लौकी okay. उसके अंदर भर देती है ताकि जो इडली भी खाई जाएगी और लौकी भी पेट में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिये में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चे को लौकी खिलाकर ही छोड़ती है।
0: इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है
1: ना। और अब गाना
0: बिल्कुल।

0: तो सोनाली, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे हुए नहीं है। लेकिन हाँ,

0: उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।